लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

न जब तुम यहाँ हो, मगर ऐसा तब हो न जब

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: exist, that it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: to smack them back.
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इन द वे टू स्टार्ट दिस इज द मॉर्निंग इन द हाउस कम ऑन

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Fantastic performance. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।
1: कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जाने।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो,

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: महीने, कभी 3 महीने पुराने बॉर्डर पे गए, कभी 3 महीने किसी कब्रस्तान में बैठे हैं, कभी कहां बैठे हुए हैं। तो ये मैं बता दूं कि 90.9% जो हमारी अफवाज हैं ये सब के सब गांव के लोग हैं। ये ऐसे गैरतमंद लोग हैं कि जो सुबह उठकर उस वक्त जब हम सब सोए होते हैं, ये नमाज पढ़ने के फौरन बाद जाके अपनी खेती बाड़ी करते हैं, खेतों को पानी लगाते हैं, अपने जानवरों को खाना देने वाले हैं। ये इसी तरीके से फिर एक जज्बा शहादत लेके अपनी कौम की भी इसी तरीके से हिफाजत करने के लिए ये अफवाज में चले जाते हैं। इनका कोई तल्लक नहीं होता कि ये क्या करें, ये अपने बच्चों से, अपने घर वालों से जब छुट्टी मिले तो जिस हालात में ये कुछ दिन के लिए अपने गांव में आते हैं या अपने बच्चों के पास आते हैं, तो ये इनकी जिंदगी है। अगर ये कह दिया जाए जी ये 20,000 या 40,000 के लिए ये बिकते हैं, तनख्वाह लेके ये शहादत करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को, ऐसे सियासी मुखालफीन के ऊपर लानत भेजता हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि मैं आपके लिए हर वक्त दुआ ये करूंगा हर नमाज के बाद कि आपने शहदाए पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम लगाया है, अल्लाह ताला आपको यजीद की टीम में खड़ा करे ताकि हम लोग सुरखुरू हो सके कि वो बच्चे, वो घर, वो जो उजर चुके हैं, जिनके जवान बीवी हैं, जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आप उनसे जाके पूछे कि आपके नौजवान हस्बैंड ने
1: जी साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सबसे पहले मेरा तमाम दोस्तों साथियों को सलाम, सुनने वालों को, शाह साहब को। अब दोनों हस्तियां सैयद अहले सैयद बैठे हैं, तो फिर शाह साहब है, इजाज़ शाह बुखारी साहब है, तो मोहतबाना सलाम है, अर्ज है। राजा साहब, राजा साहब बस अब क्या कहें कि खून खोल उठता है जब दुश्मन अहले ईमान को देखते हैं। देखें अब ये जो भी बात कहें, मुझे तो इनके लफ्जों पे भी शर्म आ रही है कि इन्होंने ये लफ्ज अदा कैसे किए। फौज में जो जाता है ना, वो तनख्वाह के लिए नहीं जाता, वो अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए नहीं जाता, वो अपनी आखिरत को संवारने के लिए जाता है। वो एक ऐसे जज्बे इशार पर आर्मी में शामिल होता है तो उसका हदफ ये होता है कि अल्लाह करे कि मुझे शहादत नसीब हो। मैं पाकिस्तान की फौज का कौन सा ऐसा जवान है जो कि जज्बा शहादत नहीं रखता, और ये बेगैरत लोग, अब मुझे तो इस पे अफसोस होता है, इसे मैं मौलाना भी नहीं कह सकता। और डीजल वालों, आप लोग डीजल लेके खुश होते हो, डीजल ले लेके तो आप कहां से कहां पहुंच गए हो, और बात करते हो उन शहदा की जिन्होंने अपने खानदान तबाह किए, जिनके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, जिनकी बहनें बेचारा बेवा हो गई, जिनकी बीवियां बेवा हो गई, यानी कि इनको इतना ख्याल नहीं आया इंसान को। आज इसके साथ बात कर देना, जनरल आसम नहीं रहा हो भी, मैं तुम्हें ये देता हूँ, तुम्हें क्या डिमांड है, तो ये आज कसम से उनकी भी यानी कि प्रस्ती शुरू कर देंगे। इब्नुल वक्त और मुफाद प्रस्त लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आज भी पाकिस्तान जिल्तों में गिरा हुआ है। हम दुनिया के लिए एक तमाशा बन जाते हैं, जितना नुकसान इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए पैदा किया, जितना नुकसान इन्होंने दिया किसी ने नहीं किया। देखिए बात है पाक फौज की, कौन सा ऐसा जवान है जो ये कहे कि जी मेरी गुर्बत बड़ी थी तो लिहाजा मैं चंद सिक्के लेने के लिए फौज में भर्ती हो गया। कोई एक भी नहीं कहेगा। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, राजा साहब आप सर्वे करवा गए क्या एक सिपाही से लेकर क्या एक जनरल तक? बहरहाल जनरल की बात तो फिर बहुत आगे चली जाती है, लेकिन बात ज्यादा ये की गई है ना कि जी ये तनखाओं के लिए ये करते हैं वो करते हैं। मेरे पास तो कसम से अल्फाज भी नहीं है कि भी मैं इन बेगैरतों को क्या कहूं। लेकिन यह है कि राजा साहब मैं जी

0: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राजा गफूर साहब, आपको तमाम मुअज्जज पैनल के ऊपर बैठे हुए स्पीकर्स को, तो जहां तक आपकी हमारी आवाज जा रही है सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे शामिल गुफ्तगू करने के लिए। जो भी हालात वाकयात इस वक्त सारे पाकिस्तान में, ओवरसीज पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, एक चीज तो वाजे तौर पे दिखाई दी कि जहां जहां भी पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी सियासी जमात से वो तल्लक रखते हों, उनकी दिलावरी हुई। उन्होंने इस चीज का इजहार किया कि हमें इस चीज की कतई तौर पे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी कदर करते हैं, लेकिन ये जो बात उन्होंने की है इससे हमारी दिलावरी हुई। और चाहिए यह था कि यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर से भी, यहाँ तक मेरी मालूमात है, इस चीज को अच्छा नहीं समझा गया। मौलाना फजलुर रहमान जितने दम हैं, जितना उनको हम समझते हैं, उनको चाहिए एक छोटी वीडियो क्लिप को अपना नशर कर देते। कुछ शोर मुझे यहाँ से, अच्छा कुछ थोड़ा थोड़ा सा बयान कर देते, वजह तस्वीरें बयान कर देते, या जो इस वक्त डिमांड बुरी हर तरफ से बुरी तरीके से उभर रही है कि हम इस चीज को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और मौलाना साहब को अपनी किस कही हुई बात से माफी मांगनी पड़ेगी। अब इसके बावजूद कि वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, मैं तो JUI पार्टी के और पार्टी के उनके फॉलोअर्स का मैं बड़ा कदरदान हूँ, बड़ी उनकी मैं इज्जत एहतराम करता हूँ, और मैंने आज तक हमेशा अपने जो हमारे कायदीन हैं उनकी मोहब्बत इज्जत एहतराम देखते हुए हमने हमेशा उनकी इज्जत की है। लेकिन ये सच्ची बात है कि हमने भी अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये बकायदा तौर पर शेयर किया कि हमारी शदीद दिलाजारी की मौलाना साहब आपने, आपको हरगिज ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी जान देते हैं उनको हम शहीद ही कहते हैं, और अब तो हिंदुओं ने भी अपने मुल्क के लिए जो कुर्बान होते हैं उनको शहीद कहना शुरू कर दिया है मुसलमानों की पैरवी में। तो पाकिस्तान के फौजियों की मौत की जो बात की गई वो शहीद की ही बात की गई है, और कहा यह क्या है वो तनख्वाह नहीं लेते इस काम की। ये जो फिक्रा है ये इंतहाई गलत उन्होंने इस्तेमाल किया। कसूर के जलसे में वो बहुत बड़ा कसूर कर बैठे हैं। कसूर के जलसे में वो बहुत सारे अपने फॉलोअर्स को देख के, एक जम्मे अफीर उनका जलसा भरा हुआ था, उस जलसे भरने को देख के उनके जज्बात जो हैं वो बहुत ज्यादा ही छलक उठे, और उन्होंने अपने बयानात का बिल्कुल केयर नहीं की, एहतियात नहीं की। इसकी एक और स्टोरी भी जो कहने वाले बताने वाले बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनकी नहीं मान रही थी। ये शनीद बात है, मेरा ओपिनियन नहीं है, एक शनीद मुबैना तौर पे कहा गया है कि दो दिन पहले जो एक बड़ी गिरफ्तारी हुई और एक बड़े अहम कातिल शख्स को और दो साथियों को उम्र कैद की सजा दी गई, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मौलाना साहब उससे नाराज थे, और क्योंकि उस शख्स ने, उस कातिल ने, किडनैपर ने, जो एक बहुत बड़ा बदमाश मशहूर चुका है, वो इनकी पनाह में गया हुआ था अपनी कोई और पार्टी छोड़ के, इनकी पार्टी को ज्वाइन करके। तो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मौलाना साहब उस फैसले से नाराज थे और उसकी गिरफ्तारी से एक दिन पहले उन्होंने ये वाला बयान दिया, लेकिन इस चीज को किसी और तरीके से भी कहा जा सकता था। मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान में हमें रोजाना जो खबरें मिलती हैं वो पिछले 3-4 दिन पहले तो हमें बाकायदा तौर पे बार बार दिखाया गया कि हमारी अफवाज पाकिस्तान यूनिफॉर्म में जो मौजूद लोग किरदार अदा कर रहे थे, 40 लोग के 42 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, और दिल दारो कतार रोया है जब साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि उनके गले काटे गए हैं। दुश्मनों ने हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो भी नेशनल सिक्योरिटी के जो व्यक्ति पहन के अपना कर रहे थे, वो 40 लोग जो मारे गए, बार बार बताया गया कि उनके गले भी काटे गए। उसके मुकाबले पे 54 लोग, हमें बताया गया कि हमने भी जालमों को, फितना फितनातुल खवारिज के लोगों को हमने भी मारा। हम रोजाना मार रहे हैं, कभी 15 मारते हैं, कभी 20 मारते हैं, कभी 40 मारते हैं, रोजाना डेली बेसिस के ऊपर हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके वो लोग आते हैं, और उनका मुकाबला कौन कर रहा है? ना ही मेरी पार्टी के लोग कायदीन कर रहे हैं, ना ही मौलाना साहब की पार्टी के लोग या उनके कायदीन कर रहे हैं। वहां जो करदार अदा कर रहे हैं दुश्मन के सामने आंखों में आंखें डाल के, जहां उनके सामने बरसरे पेकार रहते हैं, नबर्द आजमा होते हैं, उनको शहीद कर कत्ल करते हैं और खुद शहीद हो जाते हैं, तो फिर करके दिखाए कोई ऐसा काम, कोई तनख्वाह ले ले। हम मौलाना साहब को जो भी उनकी ख्वाहिश है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन उन्हें बनना है, कोई मिनिस्ट्री लेनी है, अपने भाई को मिनिस्ट्री लेके देनी है, कोई उनका प्रॉपर्टियों का जो मसला पता हुआ है वह क्या खैबर पख्तूनख्वा में, वहां अपना मर्जी का फैसला करवाना चाहते हैं, सारा कुछ करवा लें, उसके बाद हमें किसी बॉर्डर पर जाकर शहीद होकर दिखा दें, सारा कुछ ले लें, जो जो कुछ मांग रहे हैं। मैं अदब के दायरे में रहते हुए आप सब की मौजूदगी में, आपके लिसनर जो सुनने वाले हैं उसमें तमाम बेशुमार लोग होंगे, मैं अदब का दायरा अभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहता। मैं फजलुर रहमान साहब से ये चाहता हूं कि हमारी दिल आजारी की अभी फौरी तौर पे वो माफी मांग लें, उनकी माफी मांगी हुई जो है कौम के अंदर कबूल हो जाएगी। अगर उन्होंने
1: बिल्कुल
0: नहीं मांगी, इसको इसको इसको उन्हें देर किया, तो ये फिर हमारे अफवाज पाकिस्तान के शहीदों की और इस वक्त जो हाल की जंग में हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अभी यहाँ शेरों शेर पढ़ के जो बयान किए गए कि शहादत तो मोमन का की मेराज है और उसकी चाहत कुछ और है, तो जो शहीद होने वाले की जो बीवी है वो आंसू नहीं बहाती, शहीद होने वाले की माँ और उसका बाप जो है वो उसका उसकी बाकियात, उसकी वर्दी, परचम में लिपटा हुआ सामान उसके जब हासिल करते हैं तो रोते नहीं हैं, बल्कि ये कहते हैं कि उस बेटे के बाद हमारा एक और बेटा है, ये भी हम शहीद होने के लिए अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला के राह में पेश करेंगे। तो इन तमाम लोगों

जी, ये हमारा अलमिया है, हमारे इंसानों का और खासतौर पे हमारे पाकिस्तानियों का, हमारे सियासतदानों का। हमें औकात से ज्यादा हमारी पॉकेट के अंदर दो दमड़ियां ज्यादा आ जाएं, हम औकात से ज्यादा दो किताबें पढ़ लें, हमें औकात से ज्यादा बड़ा ओहदा मिल जाए और हमारे सामने हमारे फॉलोअर की बहुत बड़ी तादाद आ जाए, तो हम बहक जाते हैं, हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकते। बेआईन ही ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ है। कसूर में उन्होंने बेशक बहुत बड़ा कसूर किया है, इस कसूर को तौर पे वो मान लें, मानने के बाद माफी मान लें, तो हो सकता है कि हम साहब जिनकी दिल आजारी हुई है वो उनको माफ कर दें, वरना उनका हिसाब बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ भी और आखिरत में भी। मैं यहाँ खामोश होता हूँ।

0: जी
1: आवाज
0: राजा
1: आवाज
0: साहब,
1: है।
0: सॉरी, मैं बस ये बात अर्ज करना चाह रहा हूँ राजा साहब कि तमाम दोस्तों साथियों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और मौलाना के इन लफ्जों की बकायदा मजम्मत की, मैं भी उसमें शामिल हूँ। लेकिन मुझे वैसी एक सोच आती है, जैसे कि ये कहा जाता है कि संदूर टू की भी तैयारी है, तो क्या ये किसी के इशारे पे तो नहीं ऐसी कोई बात की गई? ये
1: सही है, सही है।
0: प्लीज इस बात को जेहन में रखिएगा, क्योंकि हमारा जो असली दुश्मन इंडिया है वो बार बार संदूर दो का, क्योंकि उनकी जो हजीमत हुई है पहला संदूर वन करके, वो दोबारा उसकी तैयारी में है। तो क्या कहीं हमारे असली दुश्मनों को हमारे घर में ही सही कुछ लोग ऐसे तो नहीं मिल गए जो कि संदूर टू के लिए यानी कि सबको तैयार कर रहे हैं? तो प्लीज निगाह रखिएगा, सोचिएगा। मेरी सोच ऐसी आ रही है जो मौलाना ने इस मुकाम पे इस हवाले में जो बात की है वो इंतहाई काबिले नफरत, काबिले मजम्मत बात है। बस मैं यही कहूंगा
2: जी
1: देखें जी, आप तमाम भाइयों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और सबसे ज्यादा तकलीफ यही है, हम सबको इसकी दिल आजारी हुई है, हमारे शहीदों की फैमिलीज को दिल आजारी हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मौलाना साहब के इस बयान का ISPR जो है वो इस वक्त नोटिस लें,
0: वेरी गुड।
1: नोटिस लें, और नोटिस लेके और इसको पूछा जाए कि मौलाना साहब आपने ये बयान क्यों दिया, आपने ये बयान आपकी किसी वजह से दिया है या आपसे कोई ऐसी बात हो गई है, ताकि उनकी उनकी वजाहत आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि ISPR को इस पे एक्शन लेना चाहिए।
3: जी, मैं सब सब मेहमानों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि एक एक सेकंड के लिए आप ये बताएं कि कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन की हैसियत से हम राजा वकूर अफसल को ये अख्तियार देते हैं। खसूसी तौर पर मैं तो कहूँगा कि ये हमारे सबके नाम लेके हमारी पार्टी हो गए, ये कंडेम करे इस चीज को, और अपने जितना भी इनका मीडिया है या इनका जितने भी चैनल्स हैं, और इवन पाकिस्तान एम्बेसी डेनमार्क को भी और फॉरेन मिनिस्ट्री को भी, ये जो चीज है ये हमारी तरफ से जो भी ये लिखेंगे वो उनकी कापियां भी आप लोगों को दी जाए, और वहां पे ये लाजमन हो कि हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और शुदा की दिल से इज्जत और एहतराम करते हैं। क्या कहते हैं आप सब?
1: पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेनमार्क की तरफ से इनको इजाजत है।
0: शाह साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। तमाम दोस्त साथी जितने भी यहाँ पे जो बोल रहे हैं या जो सुन रहे हैं, जितने भी नाजरीन हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक है कि ये बात जो इन्होंने कही है हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ये बकायदा राजा साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बकायदा ऐसे पेपर की शक्ल में ला के तो अम्बेसी में भी फॉरवर्ड करें।
3: जी चौधरी शौकत साहब, आप क्या कहते हैं?
4: बिल्कुल बिल्कुल शाह साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। जो है ना, बिल्कुल राय साहब को हक है, और जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल हम सब इत्तफाक करते हैं इस बात पे।
3: जी शाकर साहब,
5: जी बिल्कुल 100%, और दिल बहुत खुश हुआ, आपने बहुत जबरदस्त एक तजवीज पेश की, ये तारीख का हिस्सा भी बन जाएगी आपके ये बन जाएगा। मैं भी इसकी बिल्कुल आपके साथ
3: पाक फौज जिंदाबाद।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: अमन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो बराह रास्त अदार आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपको पता है कि गर्मी भी जो है वो जोरों पर है, आवाज चलती है लेकिन गर्मी ज्यादा है, लोगों ने घरों में एयर कंडीशन लगा लिए हैं, उसके अलावा घरों में पंखे, सामने पंखे भी मार्केट में अब मिलने जो है वो बंद हो गए हैं। दो दिन पहले मौसम ठीक हो गया था, लेकिन यहाँ भी मौसम तब्दील होते रहते हैं, जिस तरह सियासत तब्दील होती रहती है पूरी दुनिया की, पाकिस्तान, ईरान की, अमेरिका की, इसराइल की, इसी तरह यहाँ का मौसम भी जो है उसी जंग की हालत में रहता है, तब्दील होता रहता है, लेकिन इस मौसम को लोग इंजॉय करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, धूप से फ़ायदा उठाते हैं, इस मौसम से फ़ायदा उठाते हैं। बच्चों को चूंकि स्कूलों में छुट्टियां हैं तो इसकी भी एहतियात करनी चाहिए, मासूम बच्चों को धूप में नहीं निकालना चाहिए। तो इस वक्त हमारे थिंक टैंक जो हैं वो आपको बताएंगे धूप के मतलब, बचाव के मतलब, बच्चों के मतलब, और जो सियासी तब्दीलियाँ होती रहती हैं, और जो एक नया मौलाना साहब ने कट्टा खोल दिया शोदा के बारे में जो उन्होंने बात की है, सबके दिल जो है वो रंजीदा है, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थे। उन्हें जो जब्बरे जलसा में बात की है वो एक मजहबी लीडर का बयान इस तरह नहीं आता, वो तो एक किसी गुंडे का बयान आता है, जो जिस तरह कोई सियासी गुंडा होता है जब बयान देता है, किसी मल्ले गली का गुंडा होता है जो बयान देता है। तो मौलाना तो एक बड़े बाइज्जत इंसान है, पार्लियामेंट के मेंबर कितनी बार बने, कश्मीर कमेटी के मेंबर कितने साल रहे, और एक बहुत बड़ी जमात को रन कर रहे हैं, उनके बंदे सेनेट में भी हैं, पार्लियामेंट में भी हैं, सूबाई असम्बली में भी हैं। तो मौलाना साहब आप स्टेट के मुलाजिम हैं, ये जो MNA है ये आपकी अपनी शिव नहीं, ये आपको स्टेट ने दी हुई है, आवाम ने दी हुई है, आप स्टेट के लिए सारा काम करते हैं। अगर आप स्टेट के खिलाफ गए हैं तो फिर गद्दारी के मुकदमे इसी तरह चलते होते हैं। आप तो बड़े बाइज्जत, बड़े, आपके वालदे मोहतरम मुफ्ती महमूद साहब बहुत ही काबिल वज़ीर आला रहे वुसरात के, तो मौलाना साहब आपने क्या कर दिया, इससे आपको क्या मिलेगा, इस उम्र में, इस उम्र के हिस्से में आपको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। शाह साहब एक बार फिर आपको दरा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। गर्मी वाकई टॉप पे है, इतनी ज्यादा गर्मी तो नहीं है, ये 26-27-28 डिग्री है, लेकिन फील लाइक जो है वो इससे 1 डिग्री ज्यादा हो रही है। आप धूप में थोड़ी देर ज्यादा खड़े रहे, 3-4-5 मिनट तो आप अनफ विटामिन डी ले सकेंगे, और इसके अलावा अगर ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो पानी की कमी आपके जिस्म में बहुत हो जाएगी। इसको जब आपको पसीना आ रहा है, आपको गर्मी महसूस हो रही है, तो आप ब्राय मेहरबानी पानी जरूर पिए। देखे कोको कोला या किसी किस्म की जो ड्रिंक है वो हेल्प नहीं करती, इसमें आपको सिट्रस पानी जो है, नमकीन पानी जो है, नींबूदार पानी जो है, ये आप पिए, इससे आपको जो है, या आप अगर आपको बहुत तलब है तो आप कावा पी सकते हैं, लाइट कावा जिसे टर्किश कावा कहा जा सकता है, अफगानी कावा कहा जा सकता है, या आप उसको ये कह सकते हैं कि लाइट पाकिस्तानी चाय पी लें, लेकिन कॉफीन वगैरह से इस गर्मी में आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि कॉफीन जो है वो आपके दिमाग पे असर करती है, और ऑलरेडी जब आपके जिस्म में पानी कम होगा तो कॉफीन जो है वो ज्यादा जल्दी असर करेगी। दूसरा, जो हमारे भाई टैक्सियां या गाड़ियां चलाते हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि वो अपने टेम्परेचर जो है उसको माइनस ना करें, उसको क्योंकि एयर कंडीशन चल रहा होगा तो लिहाजा उसको 22-23 पे लाजमन रखें, 21 पे रख लें, इससे कम ना करें, क्योंकि इससे आपके टखनों में, घुटनों में, टांगों में, टांगों के मसल्स के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, प्रॉब्लम आ जाएंगी, आपके जो इलास्टिक है टांगों के वो मुतासर हो सकते हैं, तो इससे आपको काफी प्रॉब्लम होगी। और आप ये याद रखें कि जब आप इतनी धूप में गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने साथ पानी जरूर रखें, और अगर आप सादा पानी नहीं पी सकते तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा अगर आपको तलब होती है तो फॉक्स कॉन्डी ले लें, या आप इस तरीके से, मैं उनका एजेंट तो नहीं हूं लेकिन ये एक बेस्ट चीज है जो आपको शुगर दे सकती है, ये कोको कोला और दूसरी पेप्सी वगैरह से बेहतर है। लेकिन अगर आप पानी रख लें, सिट्रस वैन रख लें, तो वो आपको ज्यादा जो है वो आपके जिस्म में असरात करेगी। और अगर आप नींबू पानी रख लें तो वो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, ये मेरा खुद जाती तजर्बा और मैंने लोगों से भी सीखा हुआ है कि जब आप ड्राइव करते हैं और धूप हो और अंदर एयर कंडीशन लगा हो, तो आपको बहुत जल्दी जो है वो नींद आनी शुरू हो जाती है। और जब आपको नींद आती है तो आप समझते हैं कि आप कंट्रोल कर लेंगे, आपकी आंखें खुली है, लेकिन जब आपका दिमाग आपके साथ काम नहीं करता और सेकंड्स के अंदर कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इसलिए प्लीज अगर आप पानी पी रहे होंगे तो आपका पानी जो है वो तवाज़ुन बरकरार रखेगा बॉडी के अंदर, तो आप फ्रेश रहेंगे। तो बच्चों को और बूढ़ों को तो पानी जो है वो मस्ट पीना चाहिए, हर आधे घंटे 45 मिनट्स के बाद बच्चों को पानी पिलाएं, खुद भी पानी पिए, क्योंकि ये जो गर्मी है बच्चे बता तो नहीं सकते, बेबीज और बच्चे बता तो नहीं सकते, लेकिन पानी कोशिश करें कि पिए और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपनी एहतियात करें। और ये जो लावा आया हुआ है, ये आया तो बाहर से ही है, लेकिन आप इसको कहते हैं कि ये दोस्की लावा इसको कहा जाता है, हमारी जबान में जहन्नम का कीड़ा कहेंगे, यानी गोल, एक किस्म की गोल है, हमारे पंजाबी जबान में इसको बंबू काट कहते थे। ये ज्यादातर शतूत के दरख्तों पे और ये जो होते थे आम के दरख्त या जो जामुन के दरख्त होते थे इनके ऊपर या किसी दूसरे मीठे फ्रूट के ऊपर ये बहुत ज्यादा पाए जाते थे, और इसके हल भी जो थे लोगों के पास उस जमाने में होते थे। लेकिन अब क्योंकि ये डेनमार्क में आ गया है, फ्यून के अंदर जो है पूरे जजीरे के अंदर ये फैला हुआ है, यहाँ आमा पे भी है और यूलैंड के कुछ कम्यूनों के अंदर है, तो आप यहाँ सफर कर रहे हैं, छुट्टियां करने के लिए जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें। और ये लावा सिर्फ दरख्तों पर नहीं रहता, ये बागात के अंदर घूमता फिरता भी है, लिहाजा अगर आप किसी को देखें कि आपने लावा इसको नजर आ गया है, तो आप फौरन से पहले जो है अपने गवर्नमेंट को इतला करें, आप पुलिस को इतला कर सकते हैं या आप अपनी कम्यून को इतला कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप तो बच गए हैं लेकिन दूसरे को बच्चे या कोई और बंदा जो है वो उसको टच कर लेगा या उसके बाल जो है वो हवा में उड़ के
1: उसके। ये तो आप एहतियात है, ये तो लोगों को अब करनी चाहिए, आप बताते रहते हैं बाकायदगी से, लेकिन शाह साहब ये जो गर्मियों में सियासी बीमारियां आ गई हैं, सियासत बिल्कुल खामोश है, और आपको पता है कि लिस्टें भी बन गई हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप दे रहे हैं कि हमें किसी कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा रहा, जो लिस्टें बनती जा रही हैं, ज़रा ये हमारे सामने नाज़रीन से शेयर तो करें।
2: देखिए जी, इस वक्त हालात जो हैं वो ये हैं कि अगर आज हमने गैदरिंग ना की, अब हेट इस तरह बढ़ रही है कि डेनिश यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर जो डेनमार्क डेमोक्रेट का मेंबर है यूरोपियन पार्लियामेंट का, उसने यूरोपियन पार्लियामेंट में खड़े होकर एक नफरत अंगेज, मैं उसके पूरे वर्ड नहीं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आजकल अगर ऐसी चीजें लिखी जाए तो उससे आप पे केस भी बन सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एलिगेशन लगा रहे हैं हम पे। तो ये जो वर्ड्स उसने कहे उसके ऊपर स्वीडन का उसका एक कुलीग जो अरबी मुसलमान है, उसने उसकी ये स्पीच वहां पे देखी और उसने इसको फौरन से पहले, वो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, उसने स्वीडन से, तो उस अरबी ने इसको स्वीडिश है, मैं अरबी सॉरी कह रहा हूँ लेकिन है वो अरबी नस्ल लेकिन वो है स्वीडिश, उसने इसको पुलिस एडमिट कर दिया और उसके ऊपर केस बन गया। अब ये अदालत का फैसला है, क्योंकि ये पूरे यूरोप में इस बात को उठाया जा रहा है, और अब डेनमार्क के अंदर भी आज और कल ये फैसले हुए हैं कि भाई यहाँ की जो तंजीमात हैं, खसूसी तौर पे मेंस का गाड़ी की जो इंसानी हकूक की जो तंजीमात हैं, उनको शर्म आ गई है कि वो शर्मा गए राजा साहब कि ये मुसलमान जो हैं, ये जो फॉरनर्स हैं, इनके अंदर इतनी तंजीमें होने के बावजूद ये आवाज नहीं उठा रहे, तो हम आवाज उठाते हैं। तो उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो साल या दो साल के ऊपर जो सजा आप देखे साल के ऊपर और लोगों को इस मुल्क से बाहर निकालेंगे, ये जालमाना है और ये इंसानी हकूक के खिलाफ वर्दी है, और इस पे आवाज उठाई जाए, इस पे बहस की जाए। तो अब उन्होंने ये आवाजें उठानी शुरू कर दी है। लेकिन हैरानगी की बात है कि हमारे किसी सियासतदान के ने इस पे नहीं लिखा, कोई कुछ, कोई हमारे नजरियाती जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम अपनी कौम के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो सब खामोशी से बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल में इस वक्त धूप में कहीं बीच में बैठे हुए एंजॉय कर रहे होंगे, कहीं ग्रिल खा रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं एहसास के वो आने वाली नस्लों के बारे में अगर दो मिनट के लिए किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लोगों को आगाही दे, तो ये एक बहुत जुल्म की बात है। और दूसरी चीज ये मैं आपको बता दूं कि अब ये जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये पिछली दफा भी पीडीएम थी, इन्हीं के जरिए जी रही थी, अब ऐसी हुकूमत है जो सारी की सारी फॉरनर के वोटों से बनी है, फॉरनर्स के हमायत से बनी है, और वही फॉरनर्स के हमायत से बनने वाली पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, इसने अब तार बतौड़ हमले जो है वो मुसलमानों पे करने शुरू कर दिए हैं, और इसके ऊपर अब नजरियाती तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रीन लैंड का जो मसला आ रहा है उससे पहले ही हम ऐसी नफरत इनके ऊपर इनके दरमियान खड़ी कर दें कि यहाँ पे देखें आजकल डेनिश जो है वो खुद अपने डेनिश सियासी और ऐसे राशिस्टों का जवाब वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम राशिस्ट नहीं है, इस्लाम के बारे में बात हो रही है, मुसलमानों के बारे में बात नहीं हो रही। जब ये इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं तो फिर हमारी जो तंजीमात हैं जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े इस्लामिक फाइनिंग बनी हुई है, तो उनको चाहिए कि सारे जोड़ के बैठ जाएं और फौरन से पहले इसके उसके ऊपर खिरके मिनिस्ट्री, चर्च मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं उससे और कल्चर मिनिस्ट्री से फौरन से पहले बात करें। ये नहीं कि वहां पे कोई ड्यूटी भी नहीं है, ये इनका माइंडसेट। मैं अगले दिन एक रेडियो पे सुन रहा था तो वो कह रहे थे जी कि छुट्टियां हुई हैं, हर कोई बंदा जो है वो कामों में लगा। नहीं, ये गलत बात है। आप फॉरेन मिनिस्ट्री में टेलीफोन करेंगे, वहां की बहुत सर्विस है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी आज भी दे रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, इसी तरीके से इनरीस मिनिस्ट्री, जस्टिस मिनिस्ट्री और कल्चर और दूसरी मिनिस्ट्रियों में भी जो उम्बसमैन है वो बैठे हुए हैं, जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं, वो आप उनको मेल भेजते हैं, कोई चीज भेजते हैं तो वो उसका जवाब जो है वो देते हैं और वो कंप्लेंट्स को कर सकते हैं, देखते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो अब एक्टिव नहीं होती और ये सोचते हैं कि यार अब हमें क्या, तो कल को जो ये चीजें हैं, ये जो नफरत है, खुदा ना करे यहाँ पे बेलफास्ट वाला, इंग्लैंड वाला मसाइल यहाँ पे होने शुरू हो जाए, या जैसे अमेरिका में हो रहा है, अगर ऐसी चीजें यहाँ पे हो जाए तो फिर हम लोग तो बहुत ही कम लोग हैं और पुरअमन लोग हैं।
1: हमारी जो सोच है ना, हमारी सोच अपने मजाज के मुताबिक है ना, जो मर्जी होती है उस तरह हम सोचते हैं। शाह साहब देखे ना, सेहत के लिहाज से आप बात करते रहते हैं, क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, मैंगो फेस्टिवल हो रहे हैं, इसी तरह जो है वो आज़ादी टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शाह साहब चलती रहती हैं साथ साथ। अब एक क्रिकेट मैच हुआ एल्बर्टन में हुआ या जहाँ भी हुआ, अच्छा मैच हुआ, ट्रॉफीज तकसीम की गई, लोगों ने स्पॉन्सर किया, अच्छी बात है जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। लेकिन शाह साहब जिन लोगों टीमों ने, जिस टीम ने या मैच ऑर्गेनाइज किया या जो कुछ भी किया, उसके बाद टिकटॉक में भी ये आना शुरू हो गया जी ये तो 804 वाले हैं, और भी बहुत सारी बातें, मैं इस वक्त नहीं करना चाहता, दूसरा इशू बन जाएगा। तो शाह साहब हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जब क्रिकेट का मैच हुआ तो उसको टिकटॉक की शक्ल में 804 वाली शर्टों में क्यों शामिल करते हैं हम लोग?
2: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, यहाँ पे सोशल मीडिया भरा हुआ है, कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट के यहाँ रहते हुए भी डैनिश पासपोर्ट लिए हुए भी या बगैर डैनिश पासपोर्ट के भी वो आज भी पाकिस्तान स्टेट को निशाना बना रहे हैं, और ये बहुत बुरी बात है कि आप गवर्नमेंट के ऊपर आपको एतराज आता है, आप पीपल पार्टी का बुरा भला कहें, उनका सदर है, आप वजीर आजम को बुरा भला करें, वो नून लीग का, इसी तरीके से काफ लीग हमारी उसके साथ है, इसी तरीके से MQM है, जो जमाते सपोर्ट कर रही है आप उनको जरूर बुरा भला करें, लेकिन जब
1: सियासी तौर पर कहें ना,
2: नहीं स्टेट को आप जो है जो जो अदारे स्टेट के मुहाफिज हैं, आप ख्वाब वो पुलिस हो, ख्वाब वो जस्टिस हो, ख्वाब वो अपना फौज हो, कोई भी अदारा ऐसा हो, आप उसको गाली क्लोच नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेट के दायरे हैं, उन्हीं की वजह से स्टेट बनती है और वो आपको तहफ़ देते हैं। तो ये चीजें जो नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जो लोग क्रिकेट का करते हैं इसी तरीके से अरेंजमेंट जो है अगर वो करना शुरू कर दें, कम से कम एक माह में दो तीन ऐसी अरेंजमेंट करें और उसके अंदर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के उनको सुने, उनको हाइलाइट्स करें, तो उनको बताएं कि यहाँ के कानून जो है हम कैसे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है कि मेरी फलाने मिनिस्टर के साथ बात हुई, मेरे फलाना पॉलिटिशियन मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मेरा फलाना जो है इतना करीबी है, लेकिन जब आप जब वो आपके आपके आपके बच्चों के लिए और आपके लिए ही वो मुस्तकबिल यहाँ पे तारीख कर रहा है और वो बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, वो आपके हकूक के लिए नहीं बोल रहा, आप लोगों ने जिस पार्टियों को वोट दिया वो पार्टियां ही आपके खिलाफ काम कर रही हैं, ये इरिस लिस्टन, ये एसएफ, ये रेडिकल वेंसा, ये सोशल डेमोक्रेट और ये दूसरी पार्टी जो है अल्टरनेटिव, ये सारी की सारी आपके खिलाफ काम कर रही हैं, आपने इनको वोट दिया है कि इसलिए कि जी हमारे लिए ये बहुत,
1: ये खिलाफ काम नहीं कर रही, ये अपने मुल्क के लिए स्टेट के लिए तो काम कर रही हैं, तो जिन वोट देने वालों ने पार्टियों के मेंबर जिन्होंने वोट दिए हैं वो खुद कहें बोले ना।
2: देखिए जी, जब ये हमें येलो कार्ड दे देता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के आईन के तहत, ये बड़ा जरूरी है समझना, जब ये हमें एक येलो कार्ड स्विचिंग फल्क नंबर दे देते हैं तो फिर हम स्टेट के तहफ्फुज में आ जाते हैं, फिर हमारा भी काम है कि हम स्टेट के कानून को की इज्जत करें, एहतराम करें और इसी तरीके से स्टेट हमें पूरी तहफ्फुज देती है, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों को बताया नहीं जाता, हम लोगों को जो है ये चीजें नहीं बताई जाती। आप ये देखें कि अभी कल दो लड़कियां जो है वो सामने आई हैं और उनके नाम भी मुसलमानों वाले नहीं, और उन्होंने आगे कहा कि जी हमने तो इस्लाम को छोड़ दिया, उस कल्चर को छोड़ दिया और अब वो बातें कर रही है, तो ये चीजें जो है इसकी वजूहात क्या है, इसके पीछे क्या हम लोग हैं। हाँ, हमें ये बात करनी चाहिए कि इस्लाम जो है वो एक अलहदा चीज है, मुसलमान एक अलहदा कल्चर में रहते हैं और हर मुसलमान एरिया अपने एरिया के कल्चर में रहता है, और अगर उसमें कोई ड्रग्स यूजर है या कोई उसके अंदर प्रोस्टिट्यूट है या कोई दूसरा है या कोई होमोसेक्सुअल है तो वो इस्लाम जो है उसके इनसे कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो इंसान है तो वो रह सकते हैं। तो हम जब हमें इस्लाम के बारे में कोई चीजों का पता नहीं, हमारे जो उलमा यहाँ आए हैं वो इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, वो गोरों को कोई बात नहीं समझाते, उनके पास कोई ऐसे वर्डिंग नहीं कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के आइन को समझकर बात करे। तो राजा साहब, ये जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं ये हमारी ही वजह से हुई हैं, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमसे बड़ा राशिस्ट कोई नहीं, जो अपने आप हमने यहाँ पे एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए हम राजी नहीं होते। हमारा एक दोस्त भाई जो 70 से हमारा दोस्त है, जब उसके बारे में पता लगता है कि वो दुनिया से चला गया, वो छोड़ के चला गया या वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो हम सिर्फ मस्जिदों में इसलिए नहीं जाते कि यार वहां पे तो ये फलाना फिरके का फलाने फिरके का, ये राशिज्म हमें निकालना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे लिए मुसलमान होना तो बात की बात, हम सबसे पहले इस्लाम हमारा दीन है और हम इस्लाम के पाबंद हैं, और अच्छे शहरी बनना और अच्छे तरीके से इस मुल्क के अंदर रहना और इस्लाम का नाम बुलंद करना, ये हमारा फर्ज है। हम ना लड़ाई झगड़े के लिए इस मुल्क में आए हैं, ना फसाद पैदा करने के लिए आए हैं, ना हम टेररिस्ट हैं।

0: اور سندھ کے لیے. کیا انہوں نے وہاں پہ کسی جگہ پہ ترقی کرائی ہے؟ نہیں. ان کے بچے باہر رہتے ہیں, یہ سارا پیسہ انہوں نے دبئی قطر اور ساری دنیا میں انہوں نے پیسہ انویسٹ کر دیا ہے, دنیا بھر کو انہوں نے امیر کر دیا ہے. انگلینڈ جیسے ملک کو جو دوسری جنگ عظیم میں تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا, انہوں نے آباد کر کے رکھ دیا. اور آج یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کچھ نہیں. میں آج دیکھ رہا تھا کہ 40 پینسلوینیا امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے ایک باقاعدہ شائع کیا کہ دنیا کی پاور فل کنٹریز کون کون سی ہے, اکنامیکلی ہب اور دوسری, اور طاقت کیسی ہے ان کے پاس, ان کی فوج کیسی ہے. اس کے اندر سارے ملک ہیں, ایران بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, سارے ملک ہیں, لیکن 40 ملکوں کے اندر پاکستان نہیں ہے. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے, جس کے لوگوں, لوگ اگر سائیکل خریدتے ہیں یا کوئی ایسی گھر خریدتے ہیں تو وہ کیش خریدتے ہیں. یہاں پہ یورپ میں کتنے بندوں کا اپنا گھر ہوگا؟ ڈنمارک میں میں کہہ سکتا ہوں میں جس گھر میں میں رہ رہا ہوں وہ میرا گھر ہے, لیکن ایکچولی وہ جو ہے وہ بینک سے پیسے لیے ہوئے ہیں, بینک کو وہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, وہ ساری عمر آپ کا نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے ہمارا ملک جو لوگ ہیں یہ خود ہمارے ساتھ غداریاں کرتے ہیں, یہ خود ہمیں اس ہمارے ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں. پاکستان کی فوج نے انڈیا جیسے بڑے ملک کو ناکو چنے چبا دیے اور وہاں پہ اس کو اتنی بڑی شکست دی ہے پچھلے سال. ابھی کیا ہو رہا ہے پاکستان, اور یہ کون ہے؟ غدار وطن ہیں جو ملک کے خلاف, ملک کی فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو راجہ صاحب ان کے اوپر اگر بولنا چاہے تو ہم سارا دن بولتے رہتے ہیں, لیکن ان کو فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جو جہنمی ہے وہ جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ جس کے گلے میں سیمنٹ اور سریا میں نے لگا دیا ہے وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وطن ہے تو ہے, اسی وطن کا پاسپورٹ لے کے آئے ہیں تو اسی وطن کے ساتھ محبت کریں, اور اگر اس محبت سے اتنی آپ کو نفرت ہے تو پھر پاکستانی کھلانا چھوڑ دیں اور جائیں جہاں آپ نے جا کے رہنا. جی راجہ صاحب.
1: شاہ صاحب دیکھیں نا, بات کا آگی پاکستان کی بات آگی, بات ہم نے شروع کی تھی یہاں کھیل کے میدانوں کی بات کی تھی, صحت کی بات کی تھی, آپ نے بیماریوں کے متعلق بتایا. اب جو کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں اس میں علماء بھی جاتے ہیں, دوسرے لوکل لوگ بھی جاتے ہیں, تنظیمات کے لوگ بھی جاتے ہیں. تو شاہ صاحب اگر کوئی اچھا ٹورنامنٹ ہوا ہے, اچھی لوگوں نے کوشش کی ہے, انعامات تقسیم ہوئے ہیں, تو شاہ صاحب اس کے بعد یہ 804 والی وردیاں پہنا کے میاں صاحب کو پی ٹی آئی کا شو کرنا, تو امبیسڈر صاحب بھی وہاں مہمان خصوصی سے, تو شاہ صاحب ہمیں سب کو اپنے اپنے گربانوں میں تو جھانکنا چاہیے.
0: دیکھیں جی اس وقت جو مرضی کوئی کہے, کوئی پی ٹی آئی کا بنے, کوئی کسی کا ہو, اس وقت سب سے بڑی چیز یہ چیز ہے کہ آپ اس تنظیم کو دیکھیں, آپ اس ملک کو دیکھیں جس ملک سے آپ کی وفاداری ہے. آپ اگر پاکستان کے خلاف, میں کبھی بھی, مجھے عرصہ دراز ہو چکا ہے میں کبھی بھی پاکستان کی سیاست کے اوپر بات نہیں کرتا, لیکن آج میں مجبوراً اس لیے کر رہا ہوں کہ چھٹیوں کے ان دنوں میں اگر آپ ایکس پہ جاتے ہیں, آپ کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں, تو ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان سٹیٹ کے خلاف بات کر رہا ہے. تو خدا را کچھ اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو پاکستان کی ضرورت ہے. کل کو اگر یہ ہمیں ان ملکوں سے مجبور کر کے نکال دیتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے تو پاکستان جانا ہے, تو کم از کم جو آپ کی جدادیں ہیں وہاں پہ یا جو چیزیں ہیں, یا تو آپ اس کو چھوڑ دیں, وہ بھی آپ نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی, آپ زیرو ہو جائیں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کرکٹ بھی کھیلیں, یہاں پہ اسکواش بھی کھیلیں, ہینڈ بال کھیلیں, ہر چیز کھیلیں, لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو یہ شعور ضرور دیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا غدار تو نہیں بیٹھا ہوا جو ملک کے مفاد میں غلط باتیں کر رہا ہے, اس کا بھی اس کو اس سے نکالیں, اس کو اٹھائیں وہاں سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, اب ہم آنے والے دن کا ہمیں پتہ نہیں, آج زندہ ہے صبح نہیں ہے, لیکن جو ہمارے اولادیں ہیں, ہماری جو تھرڈ فورتھ جنریشن یہاں تیار ہو چکی ہے, خدا را اس کے لیے تو کچھ سوچیں. اگر آپ آم کھائیں گے, جامن کھائیں گے, अखरोट खाएंगे, जो मर्जी खाएं, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा दे। लेकिन यहाँ जिन बच्चों को आप ये आदत डालेंगे, अगर खुदा ना खास्ता उनके खिलाफ जो कानून बन रहे हैं, देखिए मुझे हैरानगी है कि राजा साहब आज और कल ह्यूमन राइट्स और दूसरी एजेंसियां जो हैं वो बोलनी शुरू कर दी है। पूरे 2 साल हो गए हैं कि इन्होंने ये कानून 2023 में बनाया था, लेकिन कोई यहाँ के हमारी लीडरशिप जो है उन्होंने नहीं बनाया। तो लिहाजा अभी ये चीजें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने मुआशरे को सही करें और इन लोगों को देखें कि ये क्या कर रहे हैं।
1: शाह साहब, मैं चंद सुर्खियां पढ़कर आपको सुनाता हूँ, इससे सोच का अंदाजा होगा कि हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है और हमें सोच समझ क्यों नहीं आती। शाह साहब, मैं मोटी मोटी सुर्खियां पढ़ता हूँ। ईरान पर अमरीकी हमले, जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का ईरानी दावा। फील्ड मार्शल की तुर्क सदर से आम मुलाकात। बैरिस्टर गौर का आजाद कश्मीर इंतखाबात के बायकॉट पर नजरसानी का अंदिया। पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान के वज़राए खारजा अगले हफ्ते इकट्ठे होंगे। दिल का दौरा पड़ने से कबल अल्लाह रखा की बेटी को तलाक हो गई थी। रेंजर्स एहलकार शहीद। $100 million के मोबाइल की स्मगलिंग, पाकिस्तानी निसाद मुलजम अमेरिका मुंतकिल। एहसन इकबाल ने नेटफ्लिक्स सार्फीन को खुशखबरी सुना दी। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी ओकाइमा कमेटियों का बायकॉट खत्म करने का फैसला। यूरोपी परवाजों को खलीज के हदूद में परवाज ना करने की हिदायत। 400 किलो चांदी चोरी केस, साबिक क्रिकेटर कस्टम समेत मजीद 5 मुलजमान गिरफ्तार। शाह साहब, आप मुझे अंदाजा लगाएं, सुर्खियां को बिल्कुल शुरू से शुरू करें। आप अपनी सोच, इन लोगों की सोच का आप अंदाजा लगा रहे कि हमारी सोच को, हमारे जहनों को किस तरफ ले जाया जा रहा है। चूँकि हमारा टोटल इंसार अब जो है वो टेलीफोन पर, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर जो है वो जा चुका है। चूँकि हमने खुद तहकीक बिल्कुल करनी नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, जो कुछ हमें पेश किया जाता है, जो कुछ सोशल मीडिया हमारे सामने रखता है, चारे की तरह डालता है, उसको हम चुकना शुरू कर सकते हैं। तो शाह साहब, हम डेनमार्क में रहते हैं, आप हमेशा जोर लगाते रहते हैं इस मुल्क की सियासी पार्टियों का हिस्सा बने, इस मुल्क की पार्टियों के मेंबर्स बने, इस मुल्क की पार्टियों में इलेक्शन ले, तो शाह साहब दिलचस्पियों का अंदाज़ा होता है ना। तो शाह साहब, फिर जो बातें आप कह रहे हैं कि ये कानून बन रहा है ह्यूमन राइट्स का, फलां चीज़ बात हो रही है, फलां कुछ हो रहा है, तो शाह साहब फिर किसका कसूर है?
0: देखिए जी, ये हमारा अपना कसूर है। मैं इसलिए इन लोगों को कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के हालात को देखें। आप ये देखें कि कल की बड़ी सुर्खी थी अखबारों में, खारिया का जो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर या कौन, उसको डेनमार्क का वीजा नहीं लगा, और इसी तरीके से गुजरात का भी है, उसको भी नहीं लगा, लेकिन जो हवालदार या थानेदार थे उनको वीजे मिल गया डेनमार्क के। तो ये चीजें देखने वाली हैरान चीजें हैं कि सबसे ज्यादा खुदकशी की मौत जो है वो गुजरात शहर में हो रही है, और उनकी खबर जो लगी है वो बहुत अफसोसनाक है। आप ये देखें कि इस वक्त जो पावरफुल लोग हैं उनको उनकी बख्शिश नहीं हो रही। वहां पे जो वो सीसीडी का जो महकमा बना है वो बगैर किसी अदालत में पेश, किसी जगह पेश हुए हुए हो, वो किसी भी बहाने में आपको सरेआम गोली मार देते हैं और जान से मार देते हैं, पुलिस मुकाबला शो करके, ना भी पुलिस मुकाबला वो आपको मार दे, उनको राइट है। तो आप कल को आप लोग जाते हैं पाकिस्तान में, मैं जाता हूँ, हमारी जो जदादे हैं वहां पे, हमारे जो घर हैं, कल को कोई बंदा कहता जी या तो बंदा मुझे बेच के चला गया हुआ है, करोड़ों की हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं, और अगर वो पुलिस को चंद लाख दे के तो ये पुलिस मुकाबला में हमें शो करके तो हमें हमारा वहां खात्मा कर देते हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें कोई तहफ़ है? किसी को कोई तहफ़ नहीं। पहले आप उधर देखे जी, ठीक है जी, आप फलाने गांव के या फलाने जी घर में कोई MNA या MP है, आपकी मदद को आ जाएगा। अब तो आप देख लेंगे जो वहां पे
1: आप शादी चूंकि उस खत्ते को, उस जगह को, उस शहर को जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी फितरत को, सियासतदानों की फितरत को आप जानते हैं, उनकी पॉलिसी को आप जानते हैं। आप देखें ना, कल तक हम जो एक प्रोग्राम किया ताकि शेयर भी हम कर दें कि नासर भट्ट साहब हैं, कोई हैं वो अपना कह रहे हैं नून लीग के, उनके बारे में कितनी बातें की जा रही थी। जो कल परसों हमने प्रोग्राम देखा, एक प्रोग्राम हुआ वहाँ जो कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिला में हुआ और उनके डेरे का इफ्तिताह भी हुआ, तो वहाँ बहुत सारे लीडरान आए हुए थे, वहाँ तो नासर भट्ट साहब को एक हीरो बना के पेश किया गया। तो शाह साहब देखे ना, हालात किस तरह तब्दील होते हैं, किस तरह बातें होती हैं, तो बात फिर शाह साहब घुमा के हम लाते हैं कि हम लोग यहाँ की सियासत क्यों नहीं करते।
0: जी बिल्कुल, नासर भट्ट यहाँ पे एज ए वो आए हुए थे इंग्लैंड में, वो काफी सारी दुनिया उनको जानती है, वो इंग्लैंड में उन्होंने पनाह ली, सियासी पनाह ली हुई थी, आज वही पाकिस्तान उनके लिए बिल्कुल सही हो चुका है और सेनेटर है वो पाकिस्तान के, ऐसी कोई
1: मैं
0: बात नहीं
1: दूसरे
0: है।
1: बात करूं, वो गुजरात वाले उनकी बात कर रहा हूं।
0: अच्छा, देखिए गुजरात में तो आप जिसके पास टोयोटा लैंड क्रूजर बिशा किराए पे हो, दो कपड़े जोड़े हो, वो माया लगी हुई हो, आप 2 दिन सर्कल रोड पे चक्कर लगा लें, तीसरे दिन आपको या मशीन में बन जाएंगे या आप कोई बड़े सरमायादार के नाम पे आपको मशहूर कर दिया जाएगा, अखबारी नुमाइंदे आ जाते हैं उनके साथ खाना खा लें और उनको खाना खिला दें, सिर्फ 50-60 हजार रुपया पाकिस्तानी खर्च करके आप उनको खाना खिला देते हैं तो वो एक हफ्ता अखबारों में आपको सुर्खियां लगाएंगे और आपको इतना बड़ा बिजनेसमैन बाहर के मुल्कों में शो कर देंगे, वहां बेशक हम लोग यहाँ पे बोरियां ही उठाता हूँ, मैं खुद हूँ ड्राइविंग करता हूँ, तो ये हमारी सुर्खियां लग जाती हैं। तो ये चीजें जो है राजा साहब ये मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप बाइज्जत हो, आप बेशक दाल खा रहे हो उसके साथ भी साथ चटनी हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, ये सबसे बड़ी नेमत है। देखे मुझे एक बंदे ने पूछा, उसने कहा शाह जी फलाना बन गया फलाना बन गया फलाना बन गया, मैंने कहा बात सुनो मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी, उसने कहा जी क्या नजर ही नहीं आ रहा आपके पास, क्या आप तो टैक्सी चला रहे हैं, मैंने कहा जो मेरे माँ बाप ने मुझे कलमा सिखाया ना, ये कलमा ये जो अजान मेरे कानों में दी और जो जो कलमा मेरी माँ बाप ने मुझे सिखाया इससे मैं दुनिया का खरबापति बंदा बन गया हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं परवाह कोई मर्सिडीज में फिर रहा है, कोई टोयोटा लैंड क्रूजर में फिर रहा, कोई पैदल चल रहा है, कोई चिंचली में बैठा, मैं जहां पे भी बैठूंगा मैं अपने आप को वैसे ही तसव्वुर करूंगा जिससे का माहौल होगा। तो अगर हम लोग ये चीजें कंफर्म कर लें अपनी जात में कि हमने जब मिट्टी में जाना है, जब हमने इस 6 फुट की कब्र में हमने नीचे जमीन के अंदर जाना है, तो उसके अंदर हमारा क्या हाल होगा, किस तरीके से हम आ, आ, आ, आ, आ, हम 2 दिन में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अपने जिस्म को, रूह तो देखती है ना, जिस्म गल सड़ रहा है उसके सामने तो रूह देखती है कि मैं ये था, ये मैं तो कीर शाह था, मैं बड़ी बड़के मारता था डनमार्क के, मैं बड़ी बातें करता था, ये देखो मेरा अशर क्या है। तो इसलिए तौबा करो ताकि वहां तुम्हें इस ऐसी चीजों से सुकून पहले आ जाए, ताकि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि आप खुद भी ठीक हो जाए और अपनी औलाद को भी ठीक कर ले। और यहाँ सबसे बड़ा नुकसान जो हम यहाँ पे रोजाना इस्लाम के बारे में बात होती है उसके साथ आप बाहर निकले बात करें उनके साथ, देखे कम्युनिकेशन जो है नॉलेज के साथ कम्युनिकेशन करना, आप कुरान पढ़ लें लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद आपको कुरान की समझ ही नहीं है तो उसका फायदा क्या है, जब तक कि आप कुरान के एक एक लफ्ज को आप अपने ज़हन शीन ना कर लें, अपने उसकी समझ ना आपको आ जाए कि इसमें मैं क्या बुराई कर रहा हूँ, अपने ऊपर एप्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने ऊपर उसको लेके नहीं आएंगे,
1: वो तो चले दीनी लिहाज से हो गया ना, वो तो मजहबी लिहाज से बात होगी ना शाह साहब, हम खुद कहते हैं हम पार्लियामेंट के मेंबर भी होते हैं, सूबाई असम्बलियों के मेंबर भी होते हैं, तो हम खुद रिकॉर्डिंग करवा कर कहते हैं कि हम इस असम्बली पर इस पार्लियामेंट में लानत भेजते हैं, उसके बावजूद वहाँ के बेनिफिट भी सारे लेते हैं, सारा काम करते हैं, यहाँ भी हम लोग कहते हैं कि हम वोट के खिलाफ हैं लेकिन जितने बेनिफिट हैं वो सारे हम लेते हैं, शाह साहब डबल मोरल तो हम खुद लोग हैं, डबल मोरल लोगों को हम सपोर्ट करते हैं शाह साहब।
0: बिल्कुल ये चीजें हैं कि इन इन लोगों का देखिए, मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो खानदानी लोग होते थे वो अगर सियासत करते थे तो वो सियासत के अंदर अपना भरम भी रखते थे, अपने डेरों को भी चलाते थे, हर एक चीज करते थे। अब जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो बदमाशी करते हैं, जिनका बुरा तौबा सफार करने, जिनको मैं आपको ये बताऊं कि ये पिछले हफ्ते की खबर है कि लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा तलाकें हो रही हैं और औरतें जो हैं और फांसी इतनी फैल चुकी है लाहौर के अंदर, ये उनकी सबसे बड़ी खबर थी। तो ये देखे इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, इसमें हमारा खुद हाथ होता है कि क्यों कि अगर हमारी माएं बहनें बेटियां जो हैं वो खुदकशी करने की बजाय वो अपना जिस्मानी धंधा करना शुरू कर देती है, बुराई करना शुरू कर देती है, तो इसके ऊपर हम जो लोग हैं, इस माशरे के जो लोग हैं, हमें अपने दिमाग को खोलना पड़े चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास फेरिये जाने के लिए, हमारे पास फलानी तरह उमरा करने के लिए, हज करने के लिए हम 20-25-30 लाख खर्च कर सकते हैं, तो हम ऐसी फैमिलियों को जिनके पास खाने को रोटी नहीं, अगर हम वो लगा दें, तो आज के जमाने में मैं आपको कह दूं, आप बता देता हूं कि आज के जमाने में भी अल्लाह ताला आपका घर बैठे हुए हज कबूल फरमाएगा, क्योंकि ये इस्लाम की सबसे बड़ी तलीमात में से एक तलीमात है कि आप दूसरों की मदद करें। लेकिन हम नहीं, राजा साहब मन में घूम फिर कर इसी गर्मी में इसी तरह रहना। देखिए आज की जो यहाँ पे 27-28 गर्मी है वो हम बर्दाश्त नहीं कर
1: तो
0: सकते।
1: शाह साहब एक सवाल है, शाह साहब हमारी भूख खत्म क्यों नहीं हो रही? हमारा काम कपड़ों से शुरू होता है, गाड़ियों से शुरू होता है, खाने पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फोटुओं पे जाकर फिर उसके बाद एंड उसका हो जाता है। तो शाह साहब क्या हमारी मंजिल यही है?
0: राजा साहब आपने पुराने वक्तों में कभी गाँव में कभी गए थे या गाँव के लोगों को देखा था जो तंदूर की रोटी पे अचार रख कर या वो अपना थोड़ी सी चटनी रख के, तो शुक्र
1: सैकड़ों लोग खाते थे, हजारों लोग खाते थे।
0: तो उनको कभी आपने ये सुना था कहते हुए कि जी मेरा दिल करता मैं मुर्गी खा लूं, मेरा दिल करता मैं गोश्त खा लूं।
1: आज हम आज की वो सबसे मॉडर्न गजा है
0: जी, और हम लोग हराम खा खा कर, इवन आप ये देखें कि जिन रेस्टोरेंटों में कुत्ते और गधे का गोश्त और हराम बिक रहा है, वहां पे भी हम जाके खाते हैं। फिर हराम का पैसा हमारे लोगों में रिश्वत लेना, रिश्तेदारी करनी,
1: सब छोटा बड़ा गोश्त मिक्स करके बेचना
0: जी, तो ये जो चीजें हैं इसको इसको फैलाने वाले हम लोग हैं। अगर हम लोग यहाँ से जाके वहां शोर ना मारे, अपने पैसों को अपनी जेब में रखें और अपने घर वालों को बड़ी बड़ी कोठियां ना बना कर दें, ठीक है जिस मकान में वो रह रहे हैं उसके अंदर उनको सहूलत दो, और उसके बाद उनको कोई ऐसी दुकान ऐसा कारोबार करके दे जिससे उनको चार पैसे मिले, वो कोई चार लोगों को नौकर रखें या कोई चीज चले
1: नौकर करें। शाह साहब आखिर में प्रोग्राम को क्लोज भी करें, शाह साहब कोई हाल भी साथ बताएं, बातें तो हमने बहुत ज्यादा कर ली है, कोई आपको लीडर नजर आ रहे हैं, कोई काम करेंगे या इसी तरह बातें होती रहेंगी?
0: जी अगर ये लीडर सिर्फ आम भी खाएंगे और आमों की पेटियां लेके जाएंगे, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, हाँ मुझे दो बंदे जो हैं वो मुझे काम करते हुए इस गर्मियों में भी नजर आ रहे हैं, और ख्वाब लोग खुश हो ना हो, मैं उनका नाम लेने से गुरेज नहीं करूंगा। एक आप रेडियो चला रहे हैं और लोगों को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ के हालात बता रहे हैं, और दूसरा जो है कोई बैठ के अगर वो बात कर रहा है और लिख रहा है, तो वो सिकंदर मलिक आज भी लिख रहा है, बोल रहा है, वहाँ उसके अंदर अग्रेसिव वो काफी है, गुस्से वाला काफी है, और एक सियासतदान को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, गुस्सेदार नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो चीज आती है वो बोल जाता है और इसकी परवाह नहीं करता। तो ये आप दो ही चीजें मुझे नजर आ रही है जो इस वक्त यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में भी आप लोग एक्टिव हैं, तो बाकी तो सारे जो हैं वो ठंडे होकर सो गए हैं, सत्तू पी के, वो आपके गांव का जो है शेख रशीद वो कहता है जी सत्तू पी के सारे सो जाते हैं। तो सत्तू अलग है, दुनिया में सबसे बेहतरीन गर्मियों में सबसे बेहतरीन मशरूब जो पीने वाला शरबत है वो सत्तू का होता था, सत्तू और गुड़ का, तो आज हमारे लिए वो हमारे गलों में फंस जाता है, गले पी नहीं सकते हम लोग सत्तू को। तो राजा साहब मैं अपने भाइयों से माजरत करता हूँ कि जिनको मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन अपनी नस्ल को अपने आप को बचाएं। अब ये आज उन्होंने एक खबर दी है कि अब लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों के अंदर प्लास्टिक कार्ड इस्तेमाल करने की बजाय कैश इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इन्होंने कितनी जहीन कौम है ये, इन्होंने कैसी नजर रखी हुई है कि ये छुट्टियों पे गए हैं लेकिन वहां पे कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे ताकि पता ना लगे, लेकिन वहां पे कैश इस्तेमाल कर रहे हैं और कैश एटीएम में से कैश निकाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये नोटेबल हैं और इसकी प्रॉब्लम जो है आगे जाके आएंगी, क्योंकि इन्होंने कौम को कुछ ना कुछ तो दिखाना कि हमने क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रीनलैंड का मसला है ये अमेरिका ने बिल्कुल जैसे वो ईरान के साथ जंग खत्म नहीं कर रहा, اور عربوں کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے. اسی طریقے سے وہ ڈنمارک اور یورپ کے اندر بھی فسادات پیدا کرے گا, کیونکہ امریکہ اس وقت پینی لیس ہوا ہوا ہے, بھوکا ہوا ہوا ہے, انگلینڈ بھی بھوکا ہوا ہے, اور یہ جو ملک ہیں ان کے پاس سرمایہ کی کمی ہے, یہ قرض میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کو کیا چاہیے؟ پیسہ. یہ پیسہ کیسے لے سکتے ہیں کہ یہ اپنا اسلحہ بنائیں, اسلحہ استعمال کریں, دنیا میں جنگ ہو اور ان سے لوگ اسلحہ خریدیں, اور یہ جو ہے اس اسلحہ اور بارود بیچ کے تو یہ پیسے جو ہیں اپنے گھر لے کے ہیں. تو راجہ صاحب یہ حقیقت ہے, اگر آج بھی ہم اس حقیقت سے منہ نہیں موڑیں گے اور اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہمارے باتیں ہم روزانہ باتیں بھی کریں تو یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو آپ دیکھیے گا کہ اس سمر میں تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ چھٹیوں کے بعد جب ٹیکسیوں کی نئی سیلسکیپس جو ہیں وہ جاری و ساری ہو جائیں گی, اور پھر کرسمس پہ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو بڑی بڑی سیلسکیپ ہیں, ڈی ایس بی یہاں کے ریلوے اور دوسری جو بڑی بڑی منسٹریز ہیں, جب وہ یہ سستی ٹیکسیاں جو ہیں وہ لینی شروع کر دیں گی تو پھر وان مینوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ بےچارے پسینے میں جائیں گے, کیونکہ وہ اسی بات میں خوش ہیں کہ اس وقت ہمیں کام تھوڑا بہت تو مل رہا ہے, لیکن جب بالکل ہی کام ختم ہو جائے گا پھر وہ کیا کریں گے, اپنے اخراجات کیسے پورے کریں گے؟ کیونکہ جتنے بھی او گفٹ ہیں وہ تو اسی طرح ہی رہیں گے, تو وہ کہاں سے پیسہ لیں گے؟ تو راجہ صاحب یہ تکلیفات اگر یہ آج بھی اس کے اوپر بحث نہیں کرتے, آج بھی یہ اکٹھے نہیں ہوتے اور جھوٹ کا جھوٹ بولنے میں یہ ماہر ہیں, اور اگر یہ جھوٹ بولتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر یہ کبھی بھی سامنے نہیں آ سکتے. جی راجہ صاحب.
1: راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم شیئر کیا.
0: بہت بہت شکریہ راجہ صاحب.
2: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: In varm sommer, det var en af de varmeste somre. Nogen kunne huske, solen stod højt på himlen hver eneste dag, og temperaturen

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو کہ ادھر آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، ہم نے آپ کو بتایا تھا، اپنے انٹرو میں بھی بتایا تھا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج جو ہمارے مہمان ہوں گے بیرسٹر امجد ملک صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، منسٹرز وائس چیئر پرسن بھی ہیں پنجاب او پی سی کے، اور اس کے علاوہ ملک صاحب نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا، بہت کچھ کر رہے ہیں، بڑی سٹرگل کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آپ کو بیرسٹر امجد ملک صاحب کے متعلق، بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ برطانوی وکلاء تنظیم ایسوسیشن کے پاکستانی لاز کے چیئرمین بھی ہیں، برطانیہ میں انسانی حقوق کا سن 2000 کا بہترین وکیل کا اوارڈ بھی رکھتے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پاکستان کے تعینات ممبر بھی ہیں۔ امجد ملک صاحب برطانیہ میں پاکستان کی آواز بھی ہیں، وہ دو کتابوں کے مصنف بھی ہیں، پاکستان اور برطانیہ میں انسانی حقوق شخصی آزادی کے اوپر ان کے آرٹیکل مقامی اور پاکستانی اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں۔ وہ پاکستان میں اوورسیز منسٹری کے ذیلی ادارے میں 2 سال 2016-2018 تک اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین بورڈ آف گورنر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں دور راست اصلاحات کی بنیاد بھی رکھی۔ وہ برطانیہ میں 20 سال سے اپنی وکلاء فرم امجد سالسٹر چلا رہے ہیں، جس نے بہت سارے مشہور مقدمات میں سائلین کی مدد کی تاکہ انصاف کی راہ ہموار ہو سکے اور داد رسی ممکن بھی ہو سکے۔ 22 جون 2021 کو مسلم لیگ نون بیرسٹر امجد ملک کو چیف کوآرڈینیٹر انٹرنیشنل افیئر اور پاکستانی تعینات کیا تھا، اور 2023 سے وہ سینئر نائب صدر انٹرنیشنل افیئر خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ منشور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ بیرسٹر امجد ملک صاحب 2024 سے وائس چیئرمین اوورسیز پنجاب کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ملک صاحب نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم سے کرتے رہتے ہیں، جب بھی ہم ان کو فون کرتے ہیں وہ اپنی گونا گو مصروفیات سے ٹائم بھی نکالتے ہیں اور لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں اور ہماری بات بھی سنتے ہیں، اور ہم کھل کر ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، کوئی لکی لپٹی بات یہ بھی نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے۔ تو سامعین، اپنے سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، بہت سارے آج سے ان سے سوالات کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ادارہ پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: جی جی، بہت بہت شکریہ راج صاحب، آپ کی ذرا نوازی ہے اور بڑا آپ کے خلوص کی میں دل سے قدر کرتا ہوں۔ آپ یورپ میں پاکستانیوں کی آواز ہیں، اور جب بھی آپ سے موقع ملتا ہے کوشش ہم کرتے ہیں کہ نوٹس ایکسچینج کریں، جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو آگاہ کریں، تاکہ وائڈر پبلک کو آگے ہی ہو کہ ہم ان کی فلاح کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور کیا جو ہے ہماری ریچ میں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے تگ و دو کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ راج صاحب۔
1: مل صاحب، آپ نے ہمیشہ ذرا نوازی کی ہے، تو میں تھوڑی سی آج بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کل آپ سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک آف ٹاؤن ہیں، آپ کا سوشل میڈیا کے قانون بارے کیا خیال ہے، ایران اور امریکہ، جنگ، بات چیت یا اصلاحات؟
2: دیکھیں، سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جو اگر مناسب اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے جو بیانیہ ہے اس کو بہت دور تک لے جا سکتا ہے۔ پچھلے سالوں میں اب اس کے اوپر گالم گلوچ میں کمی واقع ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ افیکٹو جو ریگولیٹرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے، نہیں تو پہلے تو پگڑی اچھالنا اور یہ وہ سارا بڑا روٹین بن گیا تھا۔ اور میرا خیال حکومت نے بھی، پاکستان کی حکومت نے بھی کوشش کی ہے کہ اس کو آزادی رہے بھی، لیکن پی ٹی اے کے ذریعے قدغن بھی لگے جہاں، اور پھر سائبر کرائم یونٹ نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن میرے خیال میں آزادی رہنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہونی چاہیے کہ آپ جو رائے استعمال کر رہے ہیں اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ ایران اور امریکہ والا جو معاملے کے اوپر آپ نے بات کی ہے، وہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے ہے۔ میرے خیال میں اس خطے میں ایران بڑا ملک ہے، اور جس طرح امریکہ بار بار ریٹیلیٹ اس کے ساتھ کر رہا ہے وہ خطے کے مفاد میں نہیں ہے، عالمی امن کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے کہ ان کو ٹیبل ٹاک پہ لے کے آیا ہے، کسی معاہدے کے نزدیک تر لے کے آیا ہے، اور کوئی اگریڈ ٹرمز کر بھی لی ہیں، لیکن اگر ایک دوسرے کے اوپر حملہ بازی رکے گی نہیں تو یہ دیر پا امن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ امریکہ بڑا ملک ہے، اس کے اس خطے میں انٹرسٹ ہیں۔ ایران لوکل اس ریجن کا بہت بڑا ملک ہے، تیل کی پیداوار کرنے میں اور پھر اس کی ترسیل میں، اور اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کے پاس۔ تو میرے خیال میں ایسے ملک کے ساتھ پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے اگر حل نکال لیا جائے तो बेहतर है। जितनी ज्यादा आंखें दिखाएंगे उतना ज्यादा दीवार पे लगाने की कोशिश करेंगे तो ईरान रिटेलिएट करेगा, जिसका नुकसान ये होगा कि ईरान अपने बरादराना मुल्कों के पास जहां अमेरिकन अड्डे हैं उनको वहां पे उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, जो इन रिटर्न किसी बड़ी जंग का जो है वो मुअज्जब बन सकता है। और मेरे ख्याल में तमाम ही लोगों को, बड़े कंट्रीज को इसमें रोल प्ले करना चाहिए, यूएन को भी रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन अमेरिका को बड़ापन दिखाना चाहिए। और अगर अमन हासिल होता है तो उसको कमजोरी नहीं बनाना चाहिए और अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए।
1: अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात की। मल साहब, इसी तरह पानी जो है वो ज़रूरत है या हथियार भारत को क्या कहेंगे? इंडस वाटर टेरिटरी जो पानी पर एक और जंग या मुआहदा अमल हो सकता है?
2: राज साहब, ये बड़ा अहम सवाल है। हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे पोलराइजेशन में इतना आगे चले जाते हैं कि कई दफ़ा मुल्क की सलामती और नेशनल इंटरेस्ट भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमने 9 मई को पिछले साल भारत को उनके हमले के जवाब में शिकस्त से दोचार किया, उनके त्यारे गिराए, उनका डिफेंस सिस्टम तबाह किया, उनके ड्रोन हमारे लोगों ने बाहर शॉटगन लेके आ गए निकल आए जब वो हमले कर रहे थे हमारे ऊपर। तो कौम ने अपनी सपा और अपनी लीडरशिप के साथ मिलके भारत को सबक सिखाया, लेकिन आप याद रखें भारत एक हमसे 4-5 गुना बड़ा मुल्क है, अददी अस्करी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, तो वो आराम से नहीं बैठेगा। इसलिए हमें नज़र रखनी चाहिए कि अब उसने एक पहले ही ऐलान किया कि मैं सिंध तास मुआहदे से मुकर जाऊंगा, मैं पानी रोकूंगा पाकिस्तान का, और मैं उन दरियाओं के ऊपर डैम बनाऊंगा जो दरिया जिनका बहाव पाकिस्तान की तरफ है। तो ये अल्टीमेटली, और अभी जो कश्मीर में उनका रोल है, अभी जो तालिबान प्रो तालिबान जो रिजीम है वहां से पीछे से जो TTP को सपोर्ट है, ये वो चीजें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि भारत चुप करके नहीं बैठेगा और पाकिस्तान को उसके मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना काम करता रहेगा। ऐसे में हमें उसके पानी के इस इस्तेमाल को हथियार नहीं बनने देना चाहिए और अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए, अपनी सफों में इतिहाद रखना चाहिए। अभी वो हमारे कश्मीर इलेक्शन को भी बना के बहाना कश्मीर हमारी और कश्मीरी कौम के दरमियान में वो दरार डालने की कोशिश कर रहा है। हमें विजिलेंट रहना चाहिए और आगाह रहना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों से और कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के वसीतर मफाद जो है उसको नुकसान ना पहुंचे। पानी बिल्कुल भारत एज अ वेपन यूज कर रहा है, और अगर सिंध तास मुआहदा जो ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक है, अगर उससे भारत निकल गया और हमने निकलने दिया तो अल्टीमेटली पानी के ऊपर जंग का मुअज्जब बनेगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आलमी राय बार करें, अपने अपने मुल्क में अपने अपने MPs और जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको ये बावर करवाएं कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, और वर्ल्ड बैंक और बाकी लोगों को आमादा करें कि वो भारत को सिंध तास मुआहदे के ऊपर अमल पैरा होने के लिए पूरा जोर लगाएं कि वो इस मुआहदे से निकल ना सकें, क्योंकि अगर इस तरह मुआहदे से लोग निकलने लग गए तो कोई भी किसी भी जगह पे मुआहदा जो है उसकी अहमियत नहीं रहेगी। और इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का भी बड़ा रोल है, जो आर्बिट्रेशन कोर्ट्स हैं उन्होंने 1-2 फैसले दिए हैं जो पाकिस्तान के हक में शुनीद सुनाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान जंग के बगैर इस मामले को हल करे, और उसमें आलमी रायामा का और आलमी अकवाम आलम का बहुत रोल होगा।
1: मलिक साहब, पाकिस्तान ने तो हमेशा कोशिश की है अच्छी बात करने की, दोस्ती की बात की है, लेकिन मैं इस तरफ आता हूँ कि आप चूंकि मुस्लिम लीग को ऐड कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून आयरलैंड की जो लीडरशिप में अचानक तब्दीली की वजह क्या बनी? क्या जल्दी में ऐसा फैसला लेना चाहिए था? आप डार साहब के इस फैसले से मुतफिक और नई क्यादत से मुतमिन हैं? मुस्लिम लीग डेनमार्क की मैं बात करूंगा, मुस्लिम लीग डेनमार्क नॉर्वे और स्वीडन को किस तरह देखते हैं?
2: मुस्लिम लीग नून डेनमार्क और नॉर्वे और स्वीडन चैप्टर चल रहे हैं, एक दो जगह है जो इश्यूज कोशिश कर रहे हैं रिजॉल्व हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपना अपना चैप्टर जो जो 2-2 साल पूरा करता जाएगा तभी नई तंजीम लगाए। शाहिद साहब की क्यादत में नॉर्वे अच्छा काम कर रहा है, स्वीडन में सईद शेख साहब और डेनमार्क में आफ्ताब रूमी साहब सदर हैं, तो कोशिश करेंगे जब अपना वो वक्त पूरा करें तो लोकल जो मकामी हमारी सपोर्ट बेस है उनके साथ मशवरे के साथ नई टीम जो है प्रपोज की जाए। आयरलैंड वाला एक टेक्निकल इशू है, वहाँ पे हमारे जो सदर थे वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव पंजाबी का प्रोग्राम करते हैं और आजकल आपको पता है कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं तो उनकी थोड़ा प्रोग्राम्स की वजह से काफ़ी शिकायत उनको आई इसहाक डार साहब को, और उन्होंने उनकी मुद्दत क्योंकि 4.5 साल हो गई थी तो एक नई फ्रेश टीम दी है आयरलैंड में, और साजिद रसूल साहब को सदारत मिली है, उनके साथ नासर खान साहब, ताहिर रशीद साहब और चौरी सोहेल साहब मेलो उनको लगाया गया, पुराने ही लोग हैं जो आगे लेके आए गए हैं। कोशिश करेंगे कि वो मिलके आयरलैंड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चैप्टर को आगे लेके बढ़े और उनके प्रोग्राम को जो मेन स्ट्रीम आयरलैंड में लीडरशिप है उससे अलग किया गया ताकि वो अपना प्रोग्राम आज़ादी से कर सकें। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जब आप अपनी आज़ादी राय का इस्तेमाल करें तो किसी भी कम्युनिटी रंग नस्ल जात को निशाना मत बनाएं, उसका नुकसान फिर ये निकलता है कि वो शिकायत पीछे आती हैं कि आया ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है कि किसी एक कम्युनिटी को निशाना बनाना, तो मेरे ख्याल ये वजह बना है। लेकिन जो भी क्यादत फैसला करे उसको मंजूर करना चाहिए, और उन्होंने 2 साल की मुद्दत थी, 4.5 साल पूरे किए हैं तो आगे भी मौका मिलता है अगर आप साथ चलें क्यादत के फैसले को माने और आगे चलें तो आगे भी चांस बनता है, और पैवस्ता राज शजर से उम्मीदें बाहर रख।
1: मलिक साहब अच्छा किया आपने जवाब दे दिया, इस पर लोग हमसे पूछते भी थे तो मैंने आपसे सवाल कर लिया, बराह रास्त सवाल किया। तो मलिक साहब डेनमार्क में मलिक सिकंदर सिद्दीक को सितारा इम्तियाज मिला तो उसकी मुबारकबाद का इंतजार है?
2: नहीं नहीं, सिकंदर मलिक साहब हमारे भाई हैं, हमारे बहुत ही कोना मश्क हमारे लीडर थे सिद्दीक साहब, ये उनके बेटे हैं, लोकल पॉलिटिक्स चलती रहती है लेकिन सिकंदर साहब और उनके वाले साहब की मुस्लिम लीग में उनके लिए बहुत खिदमात हैं। सितारा इम्तियाज मिलना पूरी कम्युनिटी के लिए फख्र है, आपके आपसी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन सितारा इम्तियाज आपकी कम्युनिटी में से एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलना ये पूरी कम्युनिटी के लिए बायस फख्र है। मैं ओपन हार्टेडली मुबारकबाद देता हूं और तमाम लोगों से उम्मीद भी करता हूं कि वो उनको मुबारकबाद भी दें और उनके साथ इस खुशी को शेयर करें। ये एक रेयर ऑनर है जिसमें आपके सफारत खाने का आपकी कम्युनिटी का किरदार होता है और यूं ही नहीं मिल जाती डेकोरेशन। हमारे यहाँ बरतानिया में भी जो किंग है वो साल में सैकड़ों लोगों को MBE अवार्ड करता है, नेशनल डेकोरेशन दी जाती है, और ये आपकी खिदमात का एक एक्नॉलेजमेंट होती है जो आप ओवर द ईयर्स कम्युनिटी को फराहम करते हैं। मेरी तरफ से आपको भी, सिकंदर साहब को भी, आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और उम्मीद है कि आपकी कम्युनिटी में से जो अच्छे काम करने वाले लोग होंगे उनको भी कंसिडर किया जाएगा और सफारत खाना आप जैसे लोगों को एक्नॉलेज करेगा, क्योंकि डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज फॉर पाकिस्तान, तो ऐसे लोगों को आगे लाया जाएगा जिनके लिटरेचर के लिए, मीडिया के लिए, पॉलिटिक्स के लिए और बिजनेस कम्युनिटी के लिए खिदमात
1: है। मलिक साहब यूरोप में जो है और कौन से फैसले जो है मुतवक्को हैं?
2: यूरोप में हम एक्टिवली देख रहे हैं जी, तुर्की है जो ड्यू है, ग्रीस है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो ये एक्टिवली इसको देख रहे हैं, ये ओदे अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, तो डार साहब जो है इसके ऊपर मीटिंग कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो फैसला होगा उसके मुताबिक लेकर चलेंगे। लेकिन ये 4 मुल्क सरदस्त जो हैं वो लिस्ट में हैं जो यूरोप में रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए डार साहब के फैसले के इंतजार में।
1: मलिक साहब OPC पंजाब, OPF पाकिस्तान क्या कहेंगे, ग्लास हाफ फुल या हाफ?
2: मैं ग्लास फुल ही समझूंगा, इमरान खान साहब के दौर में OPF का चेयरमैन ही नहीं लगा 4.5 साल, उसका बोर्ड ही नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुआ और बगैर हम वजीर के काम चलाते रहे। जुल्फी बुखारी साहब आधे पचद्दे वकील थे, वजीर थे, वो ज्यादा काम तो इमरान खान साहब के साथ था उनका। तो मेरा ख्याल है कि ग्लास हाफ फुल के आपके पास सालिक साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, ओन चौधरी साहब जूनियर मिनिस्टर हैं, कमर रजा शाह साहब बरतानिया से चेयरमैन हैं, फिर अफजाल भट्टी साहब MD OPF हैं, फिर आपके पास पूरा बोर्ड है जिसमें खालिद शाहीन भट्ट साहब MD बैतलमाल भी हैं और आसिफ चौधरी साहब जापान से हैं और मैडम भट्ट हैं जो दुबई से हैं, अमेरिका से जो है वो एक मेंबर बोर्ड है। तो ये काफी आपके लिए, कामरान खान साहब हैं भट्टी साहब के ब्रदर इन लॉ, तो ये आपके लिए एक नए 8-10 चेहरे ओवरसीज की खिदमात के लिए फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। कन्वेंशन मुकर्रर मुनक्कद करवा के उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये वो काम करना चाहते हैं और 16-17 रुकन काती प्राइम मिनिस्टर का ऐलान जिसके मुताबिक ओवरसीज को मराहत मिली। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ग्लास हाफ फुल की निशानी है। OPC पंजाब में आपको मेरी सूरत में एक ओवरसीज पाकिस्तानी दिया है जो आपका नुमाइंदा है, आपके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं और हम जदीद बुनियादों पे पोर्टल को, ओवरसीज सेंटर को, फैसिलिटेशन डेस्क को 41 जिलों में, ओवरसीज अदालतों के जरिए हम नई असलाहत लेके आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये पहिया मजीद घूमेगा, आपको ओवरसीज के डेस्क एयरपोर्ट पे मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला ये अदालतें आहिस्ता आहिस्ता आपकी गवाहियां डेनमार्क से बैठ के आप एम्बेसी से अदालतों से रजू कर सकेंगे और ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन है वो कंप्यूटराइज हो रही है, उससे आप यहाँ बैठे डेनमार्क से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकेंगे, बेच सकेंगे, खरीद सकेंगे, जो पहले पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए होता था जिसमें काफी फ्रॉड होता था, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैप करें और पंजाब के लैंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जरिए उसका जो है हल निकाल।
1: मलिक साहब, हुकूमत में शफल की खबरें चल रही हैं, कहां तब्दीली आप देख रहे हैं और कहां उम्मीद रखनी चाहिए? इसके अलावा आपने लैंड रजिस्ट्री की बात की तो इस पर बहुत सारी बातें रिश्वत की भी चलती रहती हैं।
2: लैंड रजिस्ट्री में आपको जब कंप्यूटराइज लैंड रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वो तो आप रसीद जमा करवाएंगे बैंक में और अपनी रजिस्ट्री, जो रजिस्ट्रार आपका कौंसलेट है ये रजिस्ट्रार बन जाएगा, तो आपको रिश्वत वाला तो मामला ही निकल जाएगा ना जी, आप पैसे देंगे बैंक में और अपनी रजिस्ट्री करवाएंगे। जहां तक शफल की बात है ये कोलिशन गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ जमातों का मंबा बन के कोलिशन गवर्नमेंट है और उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के वजीर भी हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स भी हैं। अब तक तो जंग जीतने के बाद पैर अच्छा काम कर रहा है, आप सालस बने हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान में, ये बहुत बड़ा ऑनर है। आपको USA का प्रेसिडेंट नाम से जानता है, आपके मुल्क की ये बहुत बड़ी इज्जत है कि वो जनरल आसिम मनीर और शहबाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और डेप्टी वजीर आजम सागदार साहब को जानते हैं, मिलते हैं, बैन अल-अक़वामी दुनिया में वजीर और जो वजीर आजम हैं वो आपके जो हेड ऑफ स्टेट है उनसे रबते में हैं। तो ये आपके लिए खुशबख्ती और खुशकिस्मती है। अब इसको आप ट्रांसलेट करें इकोनॉमिक रिवाइवल में तो ये पाकिस्तान मजीद आगे तरक्की कर सकता है और ऐसे में ओवरसीज पाकिस्तानी जो $41 बिलियन सालाना भेज रहे हैं वो आपको कुमक फराहम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब से अच्छा वजीर आजम अंडर द सर्कमस्टेंसेज नहीं मिल सकता और उनसे काम चलाना चाहिए, वो एक बेहतरीन मुंतजम है। जो भी तब्दीली आए नए इलेक्शन के बाद ही आनी चाहिए, लेकिन यह है कि शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त जो इंटरनेशनल दुनिया में ऑरा बना है उसको मुल्की मुफाद में इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे मोटे वजीर चेंज होते रहते हैं, वो तो कोई इशू
1: साहब, इलेक्शन जो है अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं, टाइम पर हो जाते हैं, तो आप क्या तैयारियां देख रहे हैं अगले इलेक्शन की?
2: देखिए, अगले इलेक्शन में सबसे बड़ा मसला जो मेरे ख्याल में है पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खात्मा करके ऑपोजिशन के साथ प्रॉपर कोई SOP तैयार करना है जिसके तहत जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर, उसकी साख के ऊपर उंगली ना उठे। तो उसमें गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन का बड़ा रोल होगा कि वो 6 महीने साल पहले इसके ऊपर काम शुरू कर दें इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, और वो जो इस्लाहात चाहिए, वो जो कैवियट, जो गारंटीज चाहिए उनको इंश्योर करें ताकि ये बखेड़ा जो है ये वंस फॉर ऑल खत्म हो जाना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ हुई है, कहाँ होती है, क्यों होती है। जो तकद्दस है बैलेट का वो बरकरार रहना चाहिए और जो अवाम जिसको वोट देते हैं उसकी सेंक्टिटी जो है वो महफूज रहनी चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट एंड अपोजिशन दोनों का ही किरदार है, और एस्टेब्लिशमेंट को एज अ फैसिलिटेटर किरदार अदा करना चाहिए, और पॉलिटिकल फॉर्मूले के तहत अगले इलेक्शन से पहले ये चीजें हो जानी चाहिए, ताकि ये फॉर्म 45, फॉर्म 47, या जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे तब भी इस तरह की जो है वो जो शिकायत निकली थी जो अदालतों ने सुनी ही नहीं, दो दो ढाई ढाई साल। तो ये पहले हल हो जाना चाहिए कि ट्राइब्यूनल्स बा इख्तियार हों, आपकी जो अर्जियां जल्दी सुनी जाएं, आपके जो बैलेट है वो ठीक हो, आपने कैसे वोट डालना है, ये फिर तजर्बे जो है लास्ट मिनट नहीं होने चाहिए। आपका आरटीएस फेल हो जाता है, क्यों हो जाता है, 61 अरब लगा के भी आरटीएस फेल हो जाता है तो फिर इतने पैसे लगाने का क्या फायदा। आप ये चीजें पहले तय करें ताकि इलेक्शन से पहले ये चीजें और जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो, एक अच्छा फेयर इलेक्शन हो, और अवाम जिसको मुंतखब करें उनको हुकूमत करने का मौका मिले।
1: मलिक साहब, ओवरसीज सेल, ओवरसीज अदालतें, मजीद क्या मुतवक्को है?
2: देखिए, मेरे ख्याल में हम ये ओवरसीज में अभी भी कश्मीर के इलेक्शन की वजह से काफी आ, आ, काफी जो है वो हालात यूके यूरोप में कशीदा हैं, और जो ऑपोजिशन है उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया के नेगेटिव इस्तेमाल को रोका नहीं है, मुल्क के खिलाफ जहां भी उनको मौका मिला है, चाहे IMF है, चाहे GSP+ है, चाहे पैसों का भेजना है बैंकों के जरिए, उसमें ऑपोजिशन ने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान को एज अ रियासत नुकसान पहुंचे। उनके जो यूट्यूबर्स हैं जो मुल्क से भाग के आए हैं वो सुबह शाम मोनेटाइज जो है अपने चैनल्स को इस्तेमाल करते हैं मुल्क के खिलाफ, जो है सारा दिन वो जो है प्रोपेगेंडा करते हैं कि किसी तरीके से मुल्क को कमजोर किया जाए। तो ऐसे में मेरे ख्याल में वो जो एवालांच है, जो मंशूर में हमने 16 नुकात दिए थे उसमें से कुछ चीजें अभी तक आगे नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, हम असम्बलियों में 10 सीटों की बात कर रहे थे मंशूर में, यहां दोहरी शहरियत खत्म होने की बात हो रही है। उसकी मेन वजह यह है कि ऑपोजिशन ने जो रियासत को नुकसान पहुंचाने वाला काम है उसको नहीं रोका। इमरान खान को सपोर्ट करना और बात है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना और बात है। भारत के साथ जंग में भी जो लोग हैं उनकी फौज को सियालकोट में लेके आ गए थे, कराची के ऊपर कब्जा हो गया था। तो ये जो रोल है, या ऐसे जो लोग जो फौज से भागे हुए हैं या फौज में उनका कोई रोल नहीं है, वो भी म्यूटनी डालने के लिए अपना हिस्सा डालते हैं, तो ऐसे लोगों की वजह से ये हमारी जो पेशरफ्त है कि पार्लियामान में ओवरसीज की सीटें हों उसके ऊपर मजामत हुई है और वो रुकी है बात, अदरवाइज अब तक लेजिस्लेशन हो जानी चाहिए थी। ये काम अभी रहता है। दूसरा, ये अदालतों वाला भी, ओवरसीज वाला भी जो है, जो आपके जो अदालतें जो हैं वो आपके शहर से सफारतखानों के जरिए आपकी गवाही डालेंगे, वो काम भी अभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। अदालतें लग गई हैं, जज लग गए हैं, कोटल के जरिए आपको अदालत में पेश करवाना है, उसके ऊपर पेशरफ्त अभी रुकी हुई है। कन्वेंशन, दूसरा कन्वेंशन अभी होना था वो रुका हुआ है, वो मेरे ख्याल में विद इन 6 मंथ्स या इंशाल्लाह ताला अगले साल समर तक हो जाएगा, जिसमें पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा कि कितने इकदाम का ऐलान किया था वजीर आजम साहब ने और कितने इकदाम के ऊपर अमल हुआ है। और तीसरा, ये जो पूरी दुनिया में एंटी जो ह्यूमन स्मगलिंग के खिलाफ एक आवाज बनी है, ग्रीस में कश्तियां उलटने के बाद पाकिस्तान में स्मगलर्स के ऊपर हाथ डाला है, उसकी जगह लेने के लिए स्किल्स इंस्टीट्यूट्स का क्याम अमल में लाया गया है, और उसके जरिए OEC को रिवैम्प किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान लीगल चैनल से बैन अल्कवामी दुनिया में लोगों को भेजे। तो वो एक अच्छी चीज है जो अगर आगे बढ़ के आपकी नर्सेज, डॉक्टर्स, आपके हुनरमंद अफराद को मुल्क से बाहर भेज सकती है, जो कि मेरे ख्याल में अगर आगे चल के ये बेहतर किरदार अदा कर सकती है, और मुल्क में सरमाया लाना उसके लिए गवादर हो, GSP+ हो, या पाक चाइना जो है कॉरिडोर हो, उसमें सरमायाकारी के मौकों के ऊपर मेरे ख्याल में SIFC भी काम कर रही है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काम कर रहा है, इसमें मजीद तेजी लाने की जरूरत है। हम सालस रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में, और अब डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हैं विद यूएस, विद सऊदी अरेबिया, तो इसकी ट्रांसलेट भी होना चाहिए, पाकिस्तान का कर्जा माफ होना चाहिए, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतर मौके होने चाहिए, ताकि ये लोग मुल्क छोड़ के मुल्क से बाहर जाने की बजाय अपने मुल्क में सरमायाकारी कर सकें, अपने मुल्क में जो है सरमायाकारी के फरोग के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। ये वो चीज़ें जो है अभी रहती हैं, जो चीज़ें हुई हैं कन्वेंशन के मुताबिक वो मैंने आपको बयान कर दी।
1: मलिक साहब, पंजाब की बड़ी पावरफुल खातून हैं, लेडी हैं, बड़ी मजबूत उनका बैकग्राउंड है, मरियम नवाज साहिबा, आप उनकी हुकूमत या उनके मतलब, आप उनके कारनामों के मतलब, आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? वो अरबों रुपए के बजट दे रही है एमपीएस को और एक्टिव रोल अदा करती हैं, लेकिन आगे ईमानदारी जो है वो आगे जब पैसा दिया जाता है तो पैसा तो खजाने से निकल जाता है, एमपीएस को मिल जाता है या एमएनएस को भी जो मिलता है, पार्टियों को भी मिलता है, तो वो ईमानदारी कहाँ से लाएंगे?
2: देखिए आप ये आप समझे कि जिन हालात में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वजारत आला संभाली थी, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई चक्कर ही कोई नहीं था, वहाँ पे स्कैंडल्स थे, भर्तियों पे स्कैंडल थे, अपॉइंटमेंट्स पे स्कैंडल थे, और आपने देखा ही है कि पता ही नहीं था कि वजीर आला काम किस तरह कर रहे थे। बुजदार साहब शरीफ आदमी हैं, लेकिन जिस तरह की कॉम्पिटेंसी पंजाब को चलाने के लिए चाहिए थी वो उनमें नहीं थी, और उसको रिप्लेस करके उन्होंने एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन साइड में, आप देख लें चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के आईजी ने और एफआईए ने मिलके एक संभाला दिया है। दूसरा, उन्होंने अमन व अमान पैदा किया है, वो जो बेरा रवि थी, वो जो बिल्कुल लॉलेसनेस थी, उसका खात्मा किया है। तीसरा, उन्होंने जो प्रोजेक्ट किए हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि आप आम हालात में इस तरह के प्रोजेक्ट इनॉग्रेट नहीं कर सकते। साफ सुथरा पंजाब है, आपने हर जिले में सफाई की है, आपने वेस्ट मैनेजमेंट लेके आए हैं, आप बच्चों के लिए, खवातीन के लिए बाइक्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप फिर अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं, पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने बनाए हैं, आपने एयर एम्बुलेंस लेके आए हैं, और आपने किसानों के लिए कार्ड निकाला है, बेवाओं के लिए कार्ड निकाला है, यतीमों के लिए कार्ड निकाला है। तो ये कोई आसान काम नहीं है इस तरह के दूरस असरात के हमल इश्यूज को करना। मरियम नवाज शरीफ हैज परफॉर्म्ड रियली वेल, उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद दी जाती के उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर टीम है उन्होंने करप्शन, ब्राइबरी और इस तरह का खात्मा करने में मदद की है। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये पंजाब है, अरबों खरबों के यहाँ बजट हैं, चीजें हैं, कई लोग होंगे जो इस सूरत हाल से या अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएंगे, उठा लेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन यह कि पकड़े जाएंगे, क्योंकि या जब लीडरशिप ये कह दे कि जी हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे, और अगर किसी का मेलफियसेंस में पब्लिक पर्स में हाथ डालता पकड़ा गया तो बचेगा नहीं। तो देखना यह है कि अगर पब्लिक पर्स में हाथ डालता पकड़ा गया, क्या उसकी फिर पुष्प पनाही होती है या उसको कटहरे में लाया जाता है। मेरे ख्याल में मरियम नवाज शरीफ ऐसे लोगों के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगी और वो लोग बच नहीं सकेंगे, फिर अपनी नौकरियों से जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी में होते हैं अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जहां के ऊपर पब्लिक पर्स में खयानत का अमल आया वहां पे फिर वो अपनी जॉब से जाएंगे। तो ये मुझे यकीन है कि मरियम नवाज शरीफ ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ेंगी।
1: मल साहब, ओवरसीज के क्या इश्यूज पेंडिंग हैं, मंशूर मुतालबात और लोगों की आरा देखते हुए?
2: देखिए राय साहब, बहुत सारे इश्यूज हैं। यूरोप, यूके, अमेरिका के प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। हमारी जो जहां दोहरी शहरियत नहीं है वहां दोहरी शहरियत लाना है, स्पेन उसमें शामिल है। जहां दोहरी शहरियत है ही नहीं और वहां पीओसी कार्ड होता था, वो पीओसी कार्ड बनाने में आजकल बड़ी देर लग रही है। एयरपोर्ट में इमेज का इशू है, वहां पे एयरपोर्ट सेल्स बेहतर होने चाहिए। आजकल डिजिटल का जमाना है, अब तो फोन पे सारा कुछ होता है, एयरपोर्ट पे ही होना चाहिए निजाम अगर कोई मसला पड़ता है, यानी कार्ड रिन्यूअल, पासपोर्ट रिन्यूअल, ये सारी चीजें एयरपोर्ट पे अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा वहां पे काम करता है, ग्रीन जोन बेहतर कर देने चाहिए। अब तो स्कैनर्स का जमाना है, या स्कैनर लगाएं और आप अपनी जो जो आता है सामान, बैगेज, उसको क्लियर कर लें। अब स्कैनर बता देते हैं इस चीज, इसमें क्या चीजें, अब आप खोल खोल सामान जो है वो लोगों को तंग करते हैं वहां, फिर रिश्वत सतानी होती है। तो ये एक बड़ा अलमिया है, लोग इमेज को इसके साथ रिलेट करते हैं। जॉब पढ़ने वाले ग्रेजुएट या ए लेवल करने वाले बच्चे जब पाकिस्तान जाते हैं और उनका बैग खोला जाता है और वहां रिश्वत देनी पड़ती है, वो एक बैड इमेज लेके पाकिस्तान से वापस आते हैं। और फिर पाकिस्तान में जाने वालों से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को लेके अपने गाँव में ही ना घुस जाए, उनको दिखाएं मुल्क में जहां तरक्की हो रही है। आप कश्मीर से हैं तो मुजफ्फराबाद लेके जाए, इस्लामाबाद लेके जाए, आप लाहौर में हैं तो अपना लाहौर की सैर करवाएं, या इर्दो गिर्द नवा से हैं तो अपना मेन, कराची से हैं तो कराची शहर। ये ना हो कि ये बच्चे जाके सिर्फ वही इमेज देख के आए जो आपके गांव का है, और उसका नुकसान ये है कि वो आके एक बेहतर इमेज नहीं लेके आते, और वो फिर बच्चे जब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं तो वो मोरक्को, तुनिजिया, तुर्की भागते हैं, वो अपने मुल्क जाने को प्रेफर नहीं करते। तो आप अपने मुल्क का बेहतर जो है वो तशख्स पेश करें ताकि बच्चे पुट ऑफ ना हो।
1: मलिक साहब, बाज़ लोग आपको मुकम्मल तौर पर लाहौर देखना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है?
2: मुकम्मल तौर पर लाहौर ही हूं, ये डिजिटल का जमाना है आजकल, फोन अभी हम, मैं अगर आप कहें कि जी डेनमार्क आगे ही प्रोग्राम करेंगे तो करेंगे, तो शायद हम एक भी ना कर पाते। तो मैं तो तकरीबन एवरी अदर 6 मंथ्स आपके साथ प्रोग्राम में पिछले 10 सालों से आ रहा हूं। तो ये डिजिटल का जमाना है, पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोगों को लेना चाहते हैं जॉब के लिए तो आना जाना रहेगा। मेरी फैमिली यहाँ है तो मुझे आना पड़ता है, मेरा एक चलता चलाता दफ्तर है 20 साल से, मेरे क्लाइंट्स हैं 5,000 से ज्यादा, तो उनको सर्विस देनी पड़ती है। और ये एक वॉलंटरी जॉब है जो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चेयरमैन का वहां होना जरूरी है, कमिश्नर का वहां होना 24 घंटे जरूरी है, वाइस चेयरमैन तो एक अलामती ऑनरेरी पोजीशन है, ये तनख्वाहदार पोजीशन नहीं है। तो हम अपनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना वॉलंटरीली कर सकते हैं, और उस सिलसिले में फिर रोजगार भी चलता रहता है जिससे हम जो खर्चा होता है उसको सर्विस करते हैं अपने दफ्तर से। तो एक अच्छा निजाम चल रहा है, जहां जरूरत होगी, आजकल तो PIA की फ्लाइट चल गई है मैनचेस्टर से लाहौर, मैडम को जब जरूरत होती है तो हम जो है विद इन 10-15 आवर्स लाहौर मौजूद होते हैं, और मैं खुली कचहरी करता हूँ हर महीने के आखिर पे। तो ये साइलिन के लिए एक मौका होता है कि जिनके मामलात रुके हुए हैं तो वो उस खुली कचहरी में आते हैं और बताते हैं, और वहां पे मौका पर अफसरान मौजूद होते हैं और हम मौका पर अहकाम लेते हैं ताकि उनकी दादरसी हो सके। वैसे भी जब मैं वहां जाता हूँ वहां मेला लगा रहता है, और यहाँ दफ्तर में भी 4 से 6, 1 से 2, सैटरडे का पूरा दिन, आज देखिए पूरा दिन आपके साथ लग जाएगा, तो सैटरडे का पूरा दिन काम करता हूँ। तो ओवरसीज के लोग, उनके साथ एक्सेस है, और जो भी उनके जुमला मामलात होते हैं उनकी हमारे साथ डिजिटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ 24 घंटे रहा रहता है। और कुल वक्ती कमिश्नर जो है वो OPC में मौजूद है, जो 21 ग्रेड का मुलाजम है, तो वो भी आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं।
1: मलिक साहब, बड़ा अच्छा कि आपने वजाहत कर दी कि लोग तो समझते थे जिस तरह ये अमेरिका वार को किस तरह देखते हैं, इसी तरह शायद लगता है ऐसे था कि आपको भी कोई करोड़ों के हिसाब से महीने के पैसे मिलते हैं।
2: नहीं, ये वॉलंटरी जॉब है, इसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, बल्कि इसके कोई पर्क्स प्रिविलेजेस भी नहीं है। और वो तो मरियम साहबा की मेहरबानी है कि उन्होंने वजीर का दर्जा दिया हुआ है, तो उसकी वजह से फ्लैग कार दी है तो ड्राइवर है साथ, लेकिन उसमें कोई पैकेज नहीं है जो, यानी तनख्वाह तनख्वाह ही होती वाइस चेयरमैन।
1: मलिक साहब, चलें इस पर बात आगे बढ़ते हैं, सवाल मेरे पास काफी हैं, जल्दी से करना चाह रहा हूँ। सितंबर में कौमे मुत्तहिदा का इजलास इवेंट फुल हो सकता है?
2: देखें, अकवामे आलम को कोशिश करनी चाहिए कि अकवामे, ये जो सितंबर का इजलास है उससे पहले पहले ईरान USA वॉर को कंक्लूड करें और अग्रीमेंट को हतमी शक्ल दें। सितंबर के UN के इजलास के दौरान में अगर ये सुलह का कोई अच्छा देरपा हल निकाल लें तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा UN के प्लेटफॉर्म से अमन का मैसेज जाएगा। अदरवाइज जैसे जैसे UN अपनी अफादियत खो रहा है, पीस भी कहीं धुंधला जाएगा, और ये मुल्क के लिए और रीजन के लिए और पूरी दुनिया के अमल के लिए खतरनाक होगा। जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस तेजी से बढ़ रही हैं, आम आदमी की बसात से रोजमर्रा की अशिया जो हैं वो निकलती जा रही हैं, और ये बहुत खतरनाक होगा अगर ये रुझान चलता रहा। आप जंग के हालात में ज्यादा अरसा नहीं रह सकते, और अब हम तकरीबन तकरीबन ये पूरा साल जंग में गुजार रहे हैं, तो आप सोचें कि माइनर वीकर इकोनॉमीज के ऊपर इसका क्या असर हो रहा होगा। यानी पेट्रोल जो है बसात से बाहर हो गया है और लोग घरों तक मैसूर हो गए, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं करते। अब तो मोटर बाइक वाले चीखना शुरू हो गए हैं कि पेट्रोल अफोर्डेबल नहीं है। तो ये आगे चल के हर गरीब मुल्क के ऊपर इसका बोझ ज्यादा पड़ता जाएगा, कर्जे का बोझ ज्यादा पड़ता जाएगा। और ये बहुत सारे मिजमरात हैं इसके, बहुत सारे इसके असरात होंगे, नेगेटिव असरात इकॉनमी के ऊपर। तो मेरे ख्याल में इक़वामे मुत्तहदा का इजलास अमन के हसूल के लिए दूरस नताइज का हमल हो सकता है, अगर बड़े ममालिक उसमें अपना करदार अदा करें।
1: मलिक साहब बड़ा अच्छा कि आपने बता दिया। मलिक साहब इस बड़े तंदूर पर तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो इन सारे हालात में मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, 3 बार वजीर आजम रह चुके, वो क्या सोच रहे हैं?
2: देखिए उनकी बेटी जो है वो उनकी जेर निगरानी, उनके रुफका की जेर निगरानी वजारत आला के ऊपर वो एक बड़ा एक्सपीरियंस ले रही है। उधर जरदारी साहब जो है वो अपने बच्चे को, मेरा ख्याल है कि वो ही इज ग्रूम्ड टू बी अ लीडर ऑफ हिज पार्टी, पीपल्स पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगली जनरेशन को ये जो तजर्बे का मौका मिला है, ये मुल्क के लिए और सियासत के लिए बेहतर है कि कोई ना कोई आगे चीज जो है वो है। उधर शहबाज साहब के बच्चे भी, दो सलमान और हमजा, उनकी मावनत करते हैं, वो भी एक अच्छी बात है कि ये नौजवान नस्ल जो है वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे सीख रही है। मियां साहब मेरे ख्याल यही सोच रहे होंगे कि एक तरफ उनका भाई वजीर आजम है, एक तरफ उनकी बेटी वजीर आला है, और सबसे बड़ी अपोजिशन की जो स्टेक होल्डर पार्टी है वो उनकी अलाई है। तो वो सोच रहे होंगे कि किस तरह ये 4-5 साल गुजरे ताकि ये लोग जो है इस जो काम है इसको लोगों के सामने पेश कर सकें और आइंदा के लिए अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी पॉलिसी बना सके। अभी क्योंकि इस टेन्योर में तो उनका आगे बढ़ के उनका कोई रोल नहीं बना, लेकिन अगले सेटअप में उनका बहुत बड़ा रोल होगा कि हाउ ही पिच हिज इलेक्शन कैंपेन, हाउ ही ट्रांसलेट जो काम उनकी बेटी ने किया है, भाई ने किया है, उसको लोगों तक पहुंचाएं, और हाउ ही टैकल द ऑपोजिशन। क्योंकि जाहिर है अगर ऑपोजिशन इज लेड बाय जो करंट ऑपोजिशन लीडर हैं, तो वो भी एक बड़ा एक देखना पड़ेगा कि अगर आप एकदम उनको फ्री हैंड मिलता है और अवाम की जो फीलिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए, तो यूथ को गैल्वनाइज करना, हुकूमत में रह के जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो एकदम लोगों के साथ राबता साजी एक बड़ा जुए शीर लाने के मुतरादिव काम है। तो ये हुकूमत से 5 साल निकल के जाके पब्लिक में जाना, ये बड़ा लीडर चाहिए, और नवाज शरीफ साहब का होना मुस्लिम लीग नून के लिए बायस बरकत है कि वो एक लीडर वजूद होगा जो अवाम में जाएगा और अवाम को अपनी तरफ रागब करेगा, इसी तरह बाकी लीडर भी करेंगे। तो यही एक टेस्ट होगा कि कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं इन 5 सालों में किए काम को अपनी कामयाबियां गंवाने के लिए कि लोग उसके ऊपर वोट भी दें।
1: मलिक साहब आपने बहुत सारी बातें की और खुलकर की, तो हमारे मामलात जो फॉरेन ऑफिस के या फॉरेन जो दूसरे मुल्कों के साथ चलते रहते हैं, इसहाक डार साहब का फॉरेन जो फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन चूंकि वो फॉरेन मिनिस्टर है, और उनकी कारकर्दगी को या उनका काम कैसे चल रहा है?
2: मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब ने इंडिया की जंग भी जीती है और सालसी के पीछे फॉरेन ऑफिस का बड़ा किरदार होता है। ये जो आपके चीफ जा रहे हैं पूरी दुनिया में, आपके वजीर आजम जा रहे हैं अरब ममालिक में, तुर्की में, पूरी दुनिया में, तो फॉरेन ऑफिस तो पूछे एक बैकबोन होती है जो ये सारा मनूवरिंग जो है उसको इफेक्ट करती है। इसहाक डार साहब फाइनेंस के आदमी हैं, कम गो हैं, काम करने वाले 24 घंटे से 22 घंटे काम करने वाले आदमी हैं। उनको फॉरेन ऑफिस दी, उन्होंने चुप चुपीते जो है आपको काम करके दिखा दिया कि पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। एक एक दिन में जंग के ऊपर इतने फॉरेन मिनिस्टर के साथ रابطہ करना, फिर सालसी के दौरान सालसी की नेगोशिएशंस आपके मुल्क में हुई हैं, ये एक अनहोना वाकया है कि एक गरीब इकोनॉमिकली इन अ बैड शेप मुल्क एक वर्ल्ड की सुपर पावर को मुसलमान मुल्क की पावर के साथ जो है सालसी कर रहा है, और वो मान रहे हैं कि ये हमारा सालस है। फैसिलिटेटर नहीं कहते, वो कहते सालस है। सो आप एक मसद का सालस के तौर पर काम कर रहे हैं, और डिस्पाइट द फैक्ट के हम आईएमएफ में बालों बालों उलझे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब ने परफॉर्म किया है, और फाइनेंस के ऊपर भी उनकी नजर होती है बिकॉज ऑफ बीइंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो एक अच्छा एक पैर डुओ चला है और पाकिस्तान की खिदमत हुई है, और ये हिस्ट्री जज करेगी कि कैसा रहा, लेकिन उनको जब भी मौका मिलता है वो परफॉर्म करते हैं। अल्लाह लोक आदमी है, गॉड फियरिंग आदमी है, मुझे उनके साथ 5 साल हो गए हैं, डायरेक्ट उनके कमांड में काम किया है, तो उनके साथ काम करने का अपना एक तरीकाकार है और अपनी डिसिप्लिन है, और वो डार साहब कॉमा और पेश और फुल स्टॉप भी ना छोड़ने वाले आदमी हैं, और वो माइन्यूटली पेपर्स को पढ़ते हैं और एक एक चीज को वो बड़ी लिहाज से देखते हैं, तो उनके साथ काम करना एक बहुत अच्छा तजर्बा था, मुझे बहुत सीखने को मिला है, और उम्मीद है कि वो आगे भी एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएंगे जो उसी तरह उनकी तरह काम करेगी और उसी तरह पार्टी को और मुल्क को और अपनी हुकूमत को सपोर्ट करेगी।
1: मलिक साहब, इसहाक डार साहब दरवेश इंसान हैं, बड़े मेहनती हैं, ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिस मैन हैं, लेकिन मीडिया भी बड़ा बेलगाम है आजकल, मीडिया भी थोड़ा सा मीडिया की जद में भी थोड़े से आए हुए हैं।
2: देखिए, वो उनकी फैमिली में किसी बच्चे का इश्यू हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसके ऊपर फौरी कार्रवाई करते हुए जो है मामला जो है उसके ऊपर केस रजिस्टर भी हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब ये काम तो अदालतों का है कि शेफ को ग्रेन से अलहदा करे, ये पॉलिटिकल काम तो है नहीं, अदालत ने फैसला करना है, ये पार्लियामान में भी नहीं होना और मीडिया पे भी नहीं होना, तो मेरे ख्याल में लेट्स नॉट हैव अ मीडिया ट्रायल, मेरी यही गुजारिश होगी कि लेट द कोर्ट डू देयर जॉब। इस मुल्क में तो वैसे जो है वो क्या नाम था वो रेमंड डेविस बंदे मार के चला गया है, तो ये पाकिस्तान का, और अभी सीसीडी के ऊपर भी बातें होती हैं, तो ये हर वक्त में कुछ ना कुछ होता रहता है, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत करें जिसमें हाथ ना मरोड़े जा सकें, और आम आदमी को भी उसी तरह इंसाफ मिले जिस तरह खास आदमी को मिलता है। तो इसी सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है, पुलिस अपना मुकदमा दायर करे, चलान जमा करवाए, अदालत इसके ऊपर अपना फैसला दे, बेस्ट यही है, और टाइम स्पैन में दे, 5-6 महीने में केस को फारिग करे, पता करे जो भी करना है, उससे ये फायदा होगा कि लोगों का इंसाफ के जो तरीकाकार है या निज़ाम है उसके ऊपर एतमाद बहाल होगा, और मेरे ख्याल में किसी के घर में भी कोई भी शख्स जुर्म कर सकता है, सजा उस जुर्मवार को मिलनी चाहिए जिसने जुर्म किया है, लेकिन उनके बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, माओं को पोलिटिसाइज या प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं बनाना चाहिए, और ये तो मसदका एक कोर्ट है कि यू आर इनसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कोशिश सिर्फ ये करें कि कोर्ट ऑफ लॉ ही डिसाइड करे, समरी जजमेंट ना हो, समरी ट्रायल ना हो, लोग गुत्थम गुत्था ना हो, लोग कानून को हाथ में ना लें, और अदालत ही जो है ऐसा फैसला करे जिसके ऊपर सजा या जजा हो।
1: मलिक साहब, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, एक दो सवाल आपसे करने हैं, कश्मीर के इलेक्शन, एहतजाजी सियासत और अपोजिशन का ये जो तड़का बीच में लगता है, आप इन चीजों को किस तरह देखते हैं?
2: देखिए, 3 चीजें हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि भारत जंग हारने के बाद हर वो हरबा इस्तेमाल करेगा जिससे आपकी रियासत कमजोर हो और आपका बयानिया जो है टूटे, तो उसमें चाहे कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, कराची हो, और टीटीपी हो, हमारे जो केपीके के जो बॉर्डर है उसके ऊपर स्किरमिशेज हो, या इंक्रीजिंग इंसर्जेंसी और तालिबानाइजेशन हो। अब दूसरा जो है वो ये छोड़ेगा नहीं, चाहे कश्मीर का इलेक्शन हो, चाहे आप केपीपी में कराएं, चाहे आप बलूचिस्तान में कराएं, इस एलिमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फॉरेन जो ताकतें हैं वो वहां अपना रोल प्ले करेंगी। अब देखना आपने ये है कि बरतानिया में 12-13 लाख कश्मीरी बसते हैं,

खुद सेलेक्ट करें, जो हुक्मरान बने वो फैसला भी करें कश्मीर एक्शन कमेटी का क्या करना है। अगर कश्मीर एक्शन कमेटी वाले लोग बना लेते हैं हुकूमत, वो फैसला करें कि क्या मराहत देनी क्या नहीं देनी, और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मकालमेल में रहे, सियासी चीज को सियासी रहने दें। यहां इसको खिदो बना लिया है, एक तो पोलराइजेशन, आप दरवाजे तोड़ रहे हैं। एहतजाज करें, ये बरतानिया है, ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पे एहतजाज को देखा जाता है, यहाँ गाजा पे एहतजाज होता है, यहाँ पे इमिग्रेंट के खिलाफ ईडीएल एहतजाज करती है, लेकिन ईडीएल को हुकूमत नहीं मिल जाती। ईडीएल के एहतजाज में लाखों लोग आते हैं, लेकिन उनको हुकूमत नहीं बनाने दे दी जाती कि वो उठा के इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दे। आप एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा जरूर हो सकते हैं, पॉपुलिस्ट मूवमेंट ट्रांसलेट हो हुकूमत में ये लाजमी नहीं है। यहाँ आबादी ज्यादा है तो बातचीत भी ज्यादा होगी, आवाज भी ज्यादा निकलेगी, बिल्कुल निकालें, लेकिन यहां बैठ के कश्मीर के वजीर आजम का फैसला ना करें, वो वहां के लोगों को, कश्मीर के लोगों को करने दें, मीरपुर मुजफ्फराबाद कोटली इस जगह के लोगों को करने दें वहां की सीटों का फैसला। किसी ने बहुत ज्यादा सियासत है शौक तो जरूर जाके सपोर्ट करें, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें, अपनी पार्टी के नहीं लड़ने दिया जाता तो आजाद खड़े हो जाएं, आजाद लड़े, लेकिन वहां के लोगों को फैसला करने दे, उनके वोटों से एमएलए बनने हैं, उनके एमएलए के वोटों से आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना है। अब एक जगह पे आबादी ज्यादा है और वहां पे आपकी से ज्यादा है, पैसे ज्यादा हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये तरीका नहीं है कि आप गालम गलोच में हर उस सतह को पार कर जाएं जिससे आपका अकाउंट तो शायद मोनेटाइज हो जाए, पैसे ज्यादा आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल पाकिस्तान में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने लगा। अपने मेंबरान ने पार्लियामेंट, अपने काउंसलर, अपने मेयर को एक अच्छा शुस्ता फेयर फ्री इलेक्शन करवाने या होने देने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, रादर देन कि एंटी पाकिस्तान जाके जी दरवाजे तोड़ दे हाई कमीशन के, या जी बंदे खड़े करके तो जी झंडे लहरा रहे हैं जी इंडिया के, या गालियां निकाल रहे हैं, वो कोई तरीका नहीं है। आपकी एम्बेसियां हैं, आपने वहां से कार्ड लेना है, नायको कार्ड लेना है, पासपोर्ट लेना है, आपने इनसे सहूलतें लेनी है कि आप अपनी एयरलाइन डायरेक्ट वहां चला सके मुजफ्फराबाद और बीरपुर, आपने ही इनसे काम लेना है तो काम चलना है। तो एक ऐसा ट्रीट करे कि जिस तरह एक मुहजब मुआशरा ट्रीट करता है, इसको इतना इज्जत बिस्ती का मसला ना बना ले कि लोग बाहर निकलना उनके लिए दुश्वार हो जाए, और आप बरतानिया में ऐसे हालात पैदा कर लें कि लोग जो हैं वो परेशान हो जाएं कि ये बरतानिया है या आपने ये जम्मू ही बना लिया इसको, तो देखना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन मैं हमेशा ही ह्यूमन राइट वकील होने के नाते जमहूरियत और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दाई रहा हूँ, अब भी मेरी यही ख्वाहिश है कि बातचीत से मामला हल किए जाएं, शख्सी आजादियों के ऊपर पाबंदियां कम होनी चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन उन एलिमेंट्स को भी परे रखना चाहिए जो इस आड़ में आपकी पाकिस्तान से लड़ाई करवाएंगे, जो इस आड़ में भारत को मौका देंगे कि वो अपने असर और रसूख के जरिए, पैसे के जरिए, इन्फ्लुएंस के जरिए वो अपना यहाँ अपनी स्टेक बनाए, और आप में और आपकी रियासत के दरमियान दायमी नफरत का आगाज करें। ये डायरेक्ट उनको सपोर्ट करती है, ना पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, ना कश्मीर को सपोर्ट करती। कश्मीर के लिए हमारी सिपाह ने, हमारे लोगों ने जाने दी, कश्मीर के लिए उनके दिल धड़कते हैं। कभी भी कश्मीर का नाम आए तो ये नहीं को कह सकता कि कश्मीर की किसी पाकिस्तानी ने मुखालफत की है। आपको भी ऐसा ही बिहेव करना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत अलहदा चीज है, हुकूमत अलहदा चीज है, कश्मीर के इलेक्शन अलहदा चीज है, और उसको एक इलेक्शन के तौर पे लेना चाहिए। यही लोग जिनको आप गालियां निकाल रहे हैं कल को एमएलए होंगे, वजीर आजम होंगे, आपने इन्हीं के साथ फिर मुकालमा करना है, इन्हीं के साथ बातचीत करनी है, बातचीत को एक हद से ना गुजरने दें। जिस दिन आपके हाथ में डंडा आ जाए और आगे पुलिस वाला हो, आपकी बातचीत खत्म होगी, आपकी सियासत, आपकी जमहूरियत खत्म होगी। आपने जिस दिन डंडा पुलिस वाले के सर पे मार दिया, खत्म होगी बात, आपकी सियासत गई बाढ़ में, आप जो मर्जी करते रहें कोई आपको रास्ता नहीं देगा। मैंने आपको मिसाल दी है, बरतानिया में मजारे होते हैं, लाखों लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम इंग्लिश डिफेंस लीग या हम एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, हम चाहते हैं इमिग्रेंट्स को उठा के वापस भेज दिया जाए,
उसमें कश्मीर भी शामिल है।

0: तो क्या किसी ने हमें निकाल दिया यहां से? इसलिए नहीं निकाला कि वो एक पॉपुलिस्ट, एक आवाज जरूर है, हुकूमत नहीं है, रियासत नहीं है, रियासतें बरतानिया नहीं है चाहती कि यहां से सब कालों को निकाल दिया जाए या सब इमिग्रेंट्स को निकाल दिया जाए। तो ये आप देखें और खुद अपनी चीजों को मद्देनजर रखें ताकि नुकसे अमन का बायस ना बने, यहां भी जगह सही ना हो जहां हम रहते हैं। और बिल्कुल मेंबराने पार्लियामान बेचारे फंसे हुए हैं, उनके 4-4 लाख, 1.5-1.5 लाख वोटर हैं जो कश्मीरी नजाद हैं, और उनको, उनकी भी बात सुननी पड़ती है। हमें सफारत खानों को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फॉरन ऑफिस को उन मेंबराने पार्लियामेंट के साथ एंगेजमेंट नहीं छोड़नी चाहिए जो कश्मीरी कॉज या कश्मीरी प्लाइट के ऊपर एक बयानिया बनाते हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए, हमें इसका जवाब देना चाहिए, हमें उनके साथ राह और रस्म नहीं अलहदा करने चाहिए और उनको नेम एंड शेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी मजबूरी और उनके मसले को समझना चाहिए और उनके साथ बातचीत करते रहना चाहिए, और बल्कि बातचीत को, डायलॉग को बेहतर तौर पे करना चाहिए। और ये वफूद के तबादले और आना जाना, अगर कोई मिनिस्टर आता है या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आते हैं या फॉरेन मिनिस्टर आता है, उनके साथ कश्मीरी नजाद मेंबराने पार्लियामान की भी बाहम मुलाकात रखवानी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। ये इलेक्शन के बाद मामला और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज इलेक्शन तक है। जैसे ही इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत फाल होगी, तो ये मामला हल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे।
1: मलिक साहब, बड़ी ज्यादती होगी एज ओवरसीज में, एक दो सवाल ना करूं और अपनी कम्युनिटी के बारे में बात ना करूं। आप ह्यूमन राइट्स को भी देखते हैं, लायर हैं आप, और पब्लिक की आवाज़ भी आप। तो मलिक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दफा हैं, बड़ी पावरफुल शख्सियत हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, हकूमत के साथ उनके बहुत ज़्यादा तल्लुकात रहते हैं, अपोजिशन के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के भी जो है वो बहुत अच्छे तल्लुकात रखते हैं। तो गर्मियों में वो पुल पर खड़े होकर नहर में छलांग लगाने का उनके पास बहुत अच्छा टाइम होता है, ज़रा सेहत बरकरार रखनी चाहिए। तो यहाँ डेनमार्क में रहते हैं, तो हमें PIA कब मिलेगी?
0: PIA ख्वाजा आसिफ साहब ने तो नहीं देनी, PIA तो आपको गवर्नमेंट पाकिस्तान ने देनी है, और प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं। हमारे जुलाई से बरतानिया से मानचेस्टर की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, लंदन से भी शुरू हो गई है। और PIA अब एक प्राइवेटाइज अदारा है, कोशिश पूरी करेंगे कि अगर एक लुक्रेटिव आपका रूट है, डेनमार्क, फ्रांस, यहाँ से जहाँ जहाँ रोम, यहाँ से आती हैं फ्लाइटें, तो ये दोबारा शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस से शुरू हो चुकी है, तो यहाँ भी शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये ज़रूर शुरू हो। और ख्वाजा साहब के बयान को, कई दफ़ा सियासी बयान को सियासी बयान के तौर पर लेना चाहिए और थोड़ा सा चिन्ह रखनी चाहिए। ख्वाजा साहब का कई दफ़ा बयान जो लाजमी नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की का बयान हो, कश्मीर कश्मीरियों का है और हम कश्मीरियों के हैं, कश्मीर हमारी शाहरुख है, और ये बयानियाँ अभी ना तब्दील हो रहा है ना होने जा रहा है। जब तक इसका पायदार हल नहीं निकलता, हम कश्मीरियों की प्लाइट के लिए इसी तरह लड़ते रहेंगे। आपस में भाई हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कश्मीरियों के खून से रूगर्दानी करेंगे। पूरा जोर लगाएंगे कि कश्मीरी कॉज को इस तरह के आपसी इख्तलाफात से नुकसान ना पहुंचे।
1: मलिक साहब, हुकूमत से मजीद हम क्या उम्मीद रखें? इसी तरह एक खबर चल रही थी कि कोई दो बंदे हैं, वो इंसानी जो है वो बंदों को भी खाते हैं, वो जेल में गए हैं, या खबर है सच है या झूठ है, ये पढ़ी गई है अखबार में, तो वो इंसानी गोश्त खाते हैं, वो जेल में भी लोग उनसे डरते हैं, वो कहते हैं हम जेल में भी इनका गोश्त खा जाएंगे। तो मलिक साहब, इस तरह की चीजें
0: फिक्र ना करें, इस तरह की बातें प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होती हैं, आप बेफिक्र रहें, और अगर खाते भी हैं तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होंगे, आप बेफिक्र रहें। इनमेट्स जो हैं, वो कैदी जो हैं, उनकी फलाह व बहबूद या उनकी फिजिकल वेलफेयर, उनकी लुक आफ्टर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, उनकी देखभाल करना, उनकी मेडिकल नीड्स और खाने पीने में एहतियात, ये सारा जेल मैनुअल में शुमार होता है। तो आप बेफिक्र रहें, कोई भी कैदी, किसी भी कैदी से उसको कोई नुकसान नहीं होगा, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो राय साहब, इजाजत अब दें।
1: आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आखिर में अपनी टीम की तरफ से भी और अपने दोस्तों की तरफ से भी कि आपने बड़ा खुला हमें टाइम दिया اور کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہ کیا ہو, جو ہم سے لوگ ہیں جی آپ نے ملک صاحب سے یہ پوچھا نہیں ہے. تو ہم نے بھی ذہنی طور پر پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ آپ کو چونکہ لائف آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو جواب تو عرارت میں ہمیں دینا ہی دینا ہوگا. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈنمارک کے لوگوں کو کیا کہیں گے؟
0: تھینک یو راجہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ڈنمارک جو میں مجھے بہت عزیز ہے, اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ڈنمارک آؤں گا اور آپ لوگوں سے ملوں گا بھی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ لوگوں کی گزارشات, سفارشات اور مطالبات میں جو سہولیات پیدا کر سکیں ضرور کریں, اور آپ بھی کوشش کریں لوگوں کو بتائیں, کھلی کچہری میں ان کو دعوت دیں کہ وہ شریک ہوں. اگلی کھلی کچہری 29 جولائی کو 2 بجے ہوگی, تو ضرور لوگ تشریف لائیں جن کے کوئی مسئلہ ہے پاکستان میں, اور ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کو گزارشات دیتے بھی ہیں تو ہمارے بہت اچھے, میرے بہت ہی عزیز دوست یہاں سفارتکار ہیں, اور آپ ان کو ضرور رابطہ کریں, وہ آپ کی گزارشات پہنچاتے ہیں ہم تک, بلکہ مجھے ملنے بھی آئے تھے وہاں لاہور آفس میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مل کے کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی آرا کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانیوں کو خدمت فراہم کرتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।